0: आलस्य को त्याग कर समय का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें।
1: यह था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, कल के हमारे अंक में हमने चर्चा की थी जमाल घोटे के पौधे के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में। आपने देखा कि ये पौधा वैसे तो बहुत आम है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं और इसकी खेती से हम लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, ज़रूरत कुछ अनुसंधानों की है और किसानों में जागरूकता पैदा करने की है। आइए आज हम कुछ बातें करें जमाल घोटे के पौधे के फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में। जहाँ तक जलवायु एवं भूमि का सवाल है, जमाल घोटे का पौधा शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती बिना किसी विशेष प्रयत्न के की जा सकती है। ये सभी प्रकार की सामान्य एवं पथरीली, कंकरीली और बंजर भूमि में भी उग सकती है। जल निकास सुविधा युक्त खेत को ही इसके लिए चुनना चाहिए, यानी जहाँ पर पानी ठहरता हो वहाँ पर इसकी खेती नहीं हो सकती। जहाँ तक पौधे के प्रवर्धन का सवाल है, जमाल घोटे के प्रवर्धन के लिए आप बीज कलम व बीज से तैयार पौध का इस्तेमाल कर सकते हैं। खेत की आवश्यकता के अनुसार जुताई करके सिंचित फसल के लिए 2x2 मीटर व असिंचित फसल के लिए 2x1 मीटर की दूरी पर बीज या नर्सरी में तैयार पौध को गड्ढा कर आप बुआई कर सकते हैं। ध्यान रहे, जहाँ पर आप बीज बोते हैं वहाँ पानी न भरें, क्योंकि इससे बीज सड़ने की संभावना होती है। प्रत्येक स्थान पर 2 से 3 बीजों को बोएं तथा 1 माह बाद इन अंकुरित पौधों में एक सबसे अधिक स्वस्थ पौधे को रखकर बाकी पौधे को निकाल दें। बीज से बुआई करने पर सिंचित अवस्था में 3 से 4 किलोग्राम व असिंचित यानी बिना सिंचाई वाली अवस्था में 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। भूमि की प्रवृत्ति के अनुसार 1 या 2 जुताई कर देते हैं। भारी मिट्टी में गहरी व हल्की मिट्टी में उथली जुताई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार दूरी पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा व इतना ही गहरा व लंबा गड्ढा बना लें। इसके बाद इस गड्ढे में मिट्टी व 2 से 3 किलोग्राम गोबर की खाद व उर्वरक, जिसमें 20 ग्राम यूरिया, 120 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 16 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश

0: चाहिए। इसके मिश्रण को भर दें। बाद में डिबलर की सहायता से दो बीज इन गड्ढों में बो दें। जहाँ तक वानस्पतिक प्रवर्धन का सवाल है, इसके लिए 1.5 से 2 फुट लंबी टहनियों को काटकर आप खेत की मेड़ पर बाड़ के लिए लगा सकते हैं। टहनियाँ लगाने के बाद पानी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कलम लगाने के 2 माह बाद तक अधिक तापमान पर इनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। वानस्पतिक संवर्धन से तैयार पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन पैदावार इसकी कम होती है। किसान भाइयों, बीजों से तैयार पौधों को आप मुख्य खेत में जो बोते हैं, इसके लिए पहले पॉलीथीन की थैलियों में इनको स्थानांतरित करना होता है। इन थैलियों में 1:1:1 के अनुपात में रेत, खाद व मिट्टी भर दें और प्रत्येक थैली में 2-2 बीज रखें। ज़रूरत के अनुसार थैलियों में हल्का पानी देते रहें। बाद में पौधों की ऊंचाई जब 1.5 फुट के करीब हो जाए, तब इन पौधों को तैयार गड्ढों में लगा दें। जहाँ तक पौधे बाड़ के लिए लगाने हैं, वहाँ पर गड्ढों की दूरी 0.5 से 1.25 मीटर रखें। सिंचित व पर्याप्त नमी की अवस्था में प्रत्येक हेक्टेयर में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस व 24 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी व फास्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय दे दें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा बुआई के 2 महीने बाद दें। किसान भाइयों, जमाल घोटे से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु हर साल इनमें कटाई छटाई करते रहनी चाहिए। पहले वर्ष में 2 फुट की ऊंचाई से, दूसरे वर्ष में 3 फुट की ऊंचाई से, तीसरे वर्ष में 4 फुट की ऊंचाई से व उसके बाद 4 से 5 फुट की ऊंचाई से पौधों की टहनियों को काटते रहना चाहिए, जिससे पौधों पर अधिक शाखाएं निकल सकें व हर शाखा फल दे सके, ताकि प्रत्येक पौधे से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये प्रक्रिया 5 वर्षों तक चलती रहती है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार ही इस प्रक्रिया को दोहराएं। जमाल घोटे में वर्ष में 2 बार सितंबर एवं मार्च से अप्रैल में पुष्पन क्रिया होती है। फूल आने के 2 माह से 4 माह के बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। दूसरे वर्ष के बाद पौधों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। जब फल काला पड़ जाए तो इसे तोड़ लेना चाहिए। साधारणतः दिसंबर व जनवरी के माह में पके फलों को तोड़ लेना चाहिए। परिपक्व फल के ऊपर से छिलका उतारकर बीज निकाल लेते हैं। इसके बाद इन्हें शुष्क स्थान पर एकत्रित कर भंडारित करना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

0: तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government, and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ regulation नहीं बदल रहे, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth. Union Home Minister Amit Shah has lauded West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari for handing over 1,129 acres of land to the Border Security Force, BSF, and Sashastra

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी सेंटिनल माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल रविवार 23 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए एमवी कैंबल बे कल रविवार 23 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान का निकोबार चौरा तरेसा कचाल और ननकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर गुरुवार 27 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और रविवार 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैंबल बे से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी कैंबल बे ननकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर मंगलवार 25 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और गुरुवार 27 तारीख को कैंबल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा।

एमवी कचाल शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल रविवार 23 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए आज संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल रविवार 23 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल रविवार 23 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी ज्वाली बॉय कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा और एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप के लिए कल संध्या 5 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और सोमवार 24 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:15 हुए हैं। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इंद्रधनुष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत खूबसूरत होता है जिंदगी का वो दौर जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल कुछ कहना चाहता है और हालात कुछ और कहने पर मजबूर कर देते हैं। इश्क एक ऐसा एहसास है जो जितना खूबसूरत है उतना ही पेचीदा भी। कभी किसी की एक मुस्कान दिल को सुकून दे जाती है तो कभी उसी शख्स की खामोशी दिल में हजारों सवाल छोड़ जाती है। इश्क जिंदगी का वो नाजुक दौर है जहाँ भावनाएं गहरी होती है, रास्ते उलझे हुए और दिल में किसी के होने का एहसास भी है और खो देने का डर भी। कभी कभी मोहब्बत आसा रास्ता नहीं होती, ये हमें इंतजार सिखाती है, खामोशी समझना सिखाती है और सबसे बढ़कर अपने जज्बातों को महसूस करना सिखाती है। इस नाजुक दौर से हर कोई कभी ना कभी गुजरता है।

दोस्तों, वक्त बदलता है, दौर बदलता है और बदलते दौर के साथ इंसान की सोच, उसके सपने और उसका अंदाज भी बदल जाता है। कभी हमारी दुनिया छोटी सी खुशियों में सिमट जाती थी और आज वही दुनिया नए सपनों, नई उम्मीदों और नई चुनौतियों से भरी हुई है। लेकिन इस बदलाव के बीच एक सवाल हमेशा दिल को छू जाता है, क्या बदलते दौर के साथ हमने पुरानी संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया है?

कहते हैं हर किसी की जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है। कुछ कहानियां पूरी होकर याद बन जाती है और कुछ अधूरी रहकर भी दिल में हमेशा जिंदा रहती है। प्यार की कहानी कुछ ऐसी ही होती है जहां एक छोटी सी मुलाकात कब खूबसूरत एहसास बन जाता है पता ही नहीं चलता। एक लड़का एक लड़की दो अजनबी, लेकिन शायद उनकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा था। वक्त का दौर हमें जिंदगी के अनोखे पलों से रूबरू कराता है।

0: दोस्तों कहते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशियों का दौर आता है तो कभी आंखों में नमी छोड़ जाता है। जिंदगी भी एक सफर है जहां हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है, हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है और हर आंसू हमें मुस्कुराने की वजह देती है। इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के हर दौर को महसूस कीजिए। इसी दुआ के साथ अपनी दोस्त गीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी गीता। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 338वीं कड़ी।

आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंद

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर दूषण विराट बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी,

करते हैं, कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया, किंतु श्री राम के अग्निवाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक वाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र, पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 338वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और रविंद्र साठे व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। पेश है वतन के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत देश गान।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि खराब मौसम के चलते अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है मछुआरों को 25 अगस्त तक। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7:00 आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत। वह विशेषज्ञ होंगे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। श्रोताओं, अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 2325402325040। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर फनकार होंगे मेहदी हसन और सलमा आखा। सवेरे 9:00 आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों से सजे कार्यक्रम तराने सुहाने का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर बॉम्बे एस जयश्री का कर्नाटक शैली में गायन होगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा कशिश सवेरे 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत अतीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे

11:30, दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में फिल्मी गीत आप सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम में भी 12:30 पर फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे ताहिरा सईद और सीमा शर्मा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक। और सैनिकों के लिए कार्यक्रम होगा दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें लोकप्रिय गीत आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। शाम 4:40 पर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। बहारों की शाम कार्यक्रम का आप लुत्फ उठा पाएंगे 4:45 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें श्री जगदीश हल्दर से बातचीत का विषय रहेगा फूलों की खेती से बढ़ती आमदनी और आत्मनिर्भरता। 6:45 पर श्री जितेंद्र पाल सिंह की लिखी झलकी आप सुनेंगे फाइल गुम हो गई। 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे बातें मुलाकातें। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत रात 8 बजे। और रात 10 बजे विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम के तहत विज्ञान भारती, और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेयास नारायणन का कर्नाटक शैली में गायन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अध्यक्षतां केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत राजस्थान से जयपुरे अकरोत्। अनेन सहैव अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायाम् आयोजितस्य ब्रिक्स पर्यटन कार्यसमूहस्य अपि समापनम् अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः पुनरुक्तवान् यत् अवैध प्रवासिनां विरुद्धं शून्य सहिष्णुता नीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते तथा अवैध प्रवासिनां परिचय निष्कासन निर्वासन सम्बद्धा प्रक्रिया कठोरतया क्रियान्विता भविष्यति। असौ उक्तवान् यत् देशात् प्रत्येकस्य अवैध प्रवासिनः निर्वासनं प्रति प्रशासनस्य प्रतिबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् जनसांख्यिकीय परिवर्तनं पूर्णतया निरोद्धुं प्रयत्नः करिष्यते। गृहमन्त्री ह्यः पश्चिमबंगालस्य सिलीगुड़ी नगरे कावाखाली प्रांगणे भारतीय न्याय संहितायाः विषये षड् दिवसीय अवबोधन प्रदर्शनीम् उद्घाट्य एकां सभां सम्बोधयन् एतत् उक्तवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः आगामि मासस्य पञ्चमदिनांके नवदिल्ल्यां स्थिते विज्ञान भवने अष्टचत्वारिंशत् विद्यालयीय शिक्षकेभ्यः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदास्यति। शिक्षा मन्त्रालयेन संसूचितं यत् विद्यालयीय शिक्षकाणां चयनं जनपदस्तरे राज्यस्तरे तथा राष्ट्रियस्तरे विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभागेन त्रिचरणात्मक चयन प्रक्रियया कृतम्। चयनिताः अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकाः सप्तविंशति राज्येभ्यः सप्त केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः अथ केन्द्रप्रशासनस्य षड् संस्थाभ्यः च सन्ति। चयनितेषु अष्टचत्वारिंशत् शिक्षकेषु षड्विंशतिः पुरुषाः द्वाविंशति च महिलाः सन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व मध्य प्रदेशे प्रचण्डात् अति प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। असम सिक्किम मेघालय नागालैंड मणिपुरम मिजोरम त्रिपुरा राज्येषु सोमवासर पर्यन्तं प्रचण्ड वृष्टेः संभावना वर्तते। अद्य दिल्ली पंजाब हरियाणा बिहार छत्तीसगढ़ पूर्वोत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड हिमालयीय प्रदेशानां केषुचित् भागेषु अपि समान स्थितेः संभावना वर्तते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 16.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 28.8 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:09 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36। श्रोताओं, अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी।

0: Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, आपको फिर से याद दिला दें, सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत। विशेषज्ञ होंगे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। श्रोताओं, अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर हमारा नंबर है 2325402325 40। हमारा एसटीडी कोड है 03192। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में जल सेवा आकलन की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सरकार ने कल उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया और पर्यटन विभाग की ओर से द्वीप समूह को एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए फिल्म नीति अधिसूचित की जा रही है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों में से एक हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार समारोह का दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में नवगठित जिला तकनीकी इकाई की एक समीक्षा बैठक आयोजित कर जल सेवा आकलन की प्रगति का जायजा लिया गया। बैठक में बताया गया कि जिले के कुल 89 गांवों में से 67 गांवों के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम स्तरीय जल आकलन फॉर्म जमा करके जल सेवा आकलन पूरा कर लिया गया है। जिला उपायुक्त ने DTU के सदस्यों और जिले के सभी तहसीलदारों को बचे हुए गांवों का सत्यापन कार्य तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। मत्स्य निदेशालय की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र

के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर सब्सिडी के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य आधारित एमएसएमई के लिए मछली, मत्स्य उत्पाद, मत्स्य बीज और फीड के परिवहन पर वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र दक्षिण अंडमान के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें मत्स्य विभाग और प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 सितंबर तक संबंधित जिले के क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय में जमा करने होंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में उप शिक्षा कार्यालय विम्बरलीगंज की ओर से स्कूली छात्रों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अंडर 17 वर्ग के लड़कों के लिए अंतर स्कूली हॉकी टूर्नामेंट 24 अगस्त से शुरू होगा। रोड रेस 29 अगस्त को सुबह 6 बजे से मिनी स्टेडियम विम्बरलीगंज से आरंभ होगा। इसमें केवल विम्बरलीगंज शैक्षणिक अंचल के स्कूली छात्र भाग ले सकेंगे। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण समिति की ओर से आयुष अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा स्तर के कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. एच.एम. सिद्धराजू ने प्रभावी एचआईवी परामर्श प्रदान करने में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। परियोजना निदेशक डॉ. सुब्रत साहा ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए द्वीपों में एचआईवी प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इसके महत्व पर बल दिया। इस दौरान अन्य स्रोत अधिकारियों ने भी इस विषय पर जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ये अभियान 21 नवंबर तक चलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान से ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को मजबूती और 6 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने के लक्ष्य में योगदान मिलेगा। अभियान के विस्तारित चरण में कृषि और गैर कृषि आजीविका के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने, सामुदायिक उद्यम प्रोत्साहन कैडर को मजबूत करने, डिजिटल और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने और उत्पादक समूहों और उत्पादक उद्यमों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से द्वीप समूह को फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापक फिल्म नीति अधिसूचित की जा रही है। इस नीति के तहत शूटिंग के लिए आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को सहायता प्रदान करने हेतु पर्यटन विभाग ने होटल मालिकों, रिजॉर्ट्स, टूर एंड ट्रेवल एजेंटों और परिवहन सेवा प्रदाताओं से सूचीबद्धता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं को आवास या होटल सुविधाएं, स्विमिंग पूल, समुद्र तट, लॉबी और गार्डन जैसे सामान्य क्षेत्रों में मुफ्त पहुंच, सम्मेलन और बैंक्वेट हॉल का निशुल्क उपयोग और अन्य सेवाओं पर भी छूट जैसी सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी। इस संबंध में इच्छुक सेवा प्रदाता अपना आवेदन पर्यटन निदेशालय में जमा कर सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंबल बे की चिकित्सक टीम ने मकाचुआ में स्वास्थ्य शिविर सह आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जूलियट जेम्स ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और निवारक उपायों को अपनाने के महत्व पर जानकारी दी। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जांच, डॉक्टरी सलाह, दंत चिकित्सा जांच, होम्योपैथिक परामर्श और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई। टीबी जांच के दौरान कुल 5 संभावित टीबी मामलों की पहचान कर बलगम के नमूने एकत्र किए गए। अंडमान निकोबार पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार के परीक्षा स्थल, तिथि और रिपोर्टिंग समय की सूची पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। प्रवेश पत्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे

जिनके पास 17 मई तक जारी किए गए वैध प्रमाण पत्र या दस्तावेज उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज़ हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियाँ। महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में उपराज्यपाल द्वारा अंडमान निकोबार क्षेत्र को प्रमुख समुद्री एवं रसद केंद्र के रूप में उजागर करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। इसके अलावा अखबार ने सांसद द्वारा द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच हवाई संपर्क में गिरावट और अत्यधिक हवाई किराए पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग के समाचार को भी प्रमुखता दी है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के 82वें जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को प्रकाशित किया है। इन्फो इंडिया और द इको ऑफ इंडिया ने टुगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की कमी के समाचार को अपने अखबार में जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग की अध्यक्षता में जल सेवा आकलन की प्रगति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सरकार ने कल उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण का शुभारम्भ किया और पर्यटन विभाग की ओर से द्वीप समूह को एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए फिल्म नीति अधिसूचित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपका बच्चा 2 महीने से 5 साल तक की उम्र का है तो दस्त होने पर उसे ORS घोल के साथ सही मात्रा में जिंक की गोली जरूर दें 14 दिन तक। अधिक जानकारी के लिए आशा या आंगनबाड़ी बहन से संपर्क करें।
1: जिंक की गोली 14 दिन।
2: माइक्रोन्यूट्रिएंट इनिशिएटिव एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:15 और 32 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी पहचान है। इसी धरती ने हमें जन्म दिया और जीना सिखाया। सरहद पर खड़ा जवान इसी मिट्टी की हिफाजत करता है। उसकी कुर्बानी की वजह से आज हम चैन की सांस लेते हैं।

दोस्तों, देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं दिखाई जाती, बल्कि खेल के मैदान में भी तिरंगा पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा करता है। जब खिलाड़ी भारत के लिए खेलता है, करोड़ों दिल उसके साथ धड़कते हैं। जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, पूरे देश की होती है। तो आइए उसी जुनून के साथ कहें, जग दे इंडिया।

दोस्तों, वतन से दूर जाकर ही शायद वतन की कीमत समझ आती है। हमारी मिट्टी, हमारी हवा और हमारी यादें हमेशा बुलाती है। ये देश हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, क्योंकि इसके हर रंग में हमारी पहचान बसी है।

हेलो डॉक्टर।

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं शवाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम दांतों की सफाई और कैविटी पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जबड़े में दर्द, दांतों की गलत बनावट, चबाने में परेशानी या चेहरे की बनावट से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध सिर्फ हमारी मुस्कान से नहीं बल्कि हमारे पूरे चेहरे और स्वास्थ्य से है। आज का हमारा विषय है दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत। श्रोताओं, इस विषय से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: श्रोताओं, अगर आप भी दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 2325402325440 और हमारा एसटीडी कोड है 03192। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं।
1: सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम अक्सर ओरल हेल्थ को खाली दांतों की समस्या समझते हैं, जबकि ये जो दांत, जबड़ा और हमारा चेहरा होता है ये एक ही फंक्शनल यूनिट का पार्ट होता है। तो अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम आता है तो इससे हमारे दांतों के चबाने का जो तरीका

0: होता है या जिसे हम बाइट कहते हैं, ये
1: जी
0: चेंजेस, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस आगे चल के जो मांसपेशियां होती हैं या मसल्स होते हैं इसमें तकलीफ स्टार्ट कर सकती हैं, और ये एंड में जॉ जॉइंट्स या हमारे जबड़े के जॉइंट तक भी इफ़ेक्ट कर सकता है।
1: जी
0: तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब जॉ जॉइंट्स में इफ़ेक्ट होता है तो जो दर्द होता है या जो तकलीफ़ होता है वो खाली दांत तक सीमित नहीं रहता है, वो
1: जी
0: जबड़े में कान कान के सामने में, कान पट्टी में या सिर तक भी जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा इसे एक फंक्शनल यूनिट के तरह या इकलौते यूनिट के तरह कंसिडर करता हूँ,
1: जी
0: और

0: जबड़े में, कान कान के सामने में, कान पट्टी में या सिर तक भी जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा इसे एक फंक्शनल यूनिट के तरह या इकलौते यूनिट के तरह कंसिडर करता हूँ,
1: जी
0: और तीनों को एक साथ ध्यान देना होता है, तभी ये जाके आपको अच्छे से सर्व कर पाता है।
1: जी ऐसे में जो है कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत जो है डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए?
0: हमारे क्लिनिक में हम हर पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि बॉडी अपने आप को संकेत देता है। कुछ कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना होता है,
1: जी
0: जैसे लगातार दांतों में दर्द होना, और ये दर्द भी ऐसा होता है कि ये हर दिन बढ़ते जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा मसूड़े में सूजन होना, मसूड़े से बार बार ब्लीडिंग होना, जबड़े में सूजन दिखना, चेहरे के कोई एक साइड में सूजन होना, इस सूजन के साथ बुखार या दर्द का भी होना,
1: जी
0: इसके अलावा दांतों का सडनली लूज हो जाना या हिलना शुरू हो जाना, ये
1: जी
0: सब कारण होते, ये सब ऐसे लक्षण होते हैं जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हम अंडमान में हैं, तो यहाँ में पान का सेवन थोड़ा ज़्यादा है,
1: जी
0: तंबाकू का सेवन ज़्यादा है, तो यहाँ में मैं बोलता हूँ कि कोई अल्सर या छाला जो मुँह में होता है, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा तक ठीक नहीं हुआ हो, वो उसे भी सीरियसली देखना चाहिए और तुरंत ही डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए।
1: जी यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चंस को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, देखते हैं हम आमतौर पर जो है लोग जो है दांतों की समस्या को तो पहचान लेते हैं, लेकिन जबड़े की समस्या के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?
0: नॉर्मली मुंह खोलते समय एक क्लिकिंग का साउंड आना, या जॉ में स्टिफनेस या अकड़ना दिखना, या चबाते समय में थकान या दर्द का महसूस होना, शुरुआती साइंस होते हैं।
1: जी
0: तो इसे मैं कभी भी नज़रअंदाज करने को नहीं बोलता हूँ,
2: हेलो
0: और अगर जब ये तकलीफ़ दांत दर्द से हटकर जब जॉइंट पेन और चेहरे में दर्द का स्टार्ट होता है, तब वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है।
1: जी, अगर जो है जबड़े में बार बार दर्द, अकड़न या क्लिक जैसी आवाज़ आती है तो क्या इसे सामान्य मानना चाहिए या कुछ इश्यू है?
0: कभी कभार क्लिकिंग विदाउट पेन या दर्द के बिना वाला क्लिकिंग को हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। अगर क्लिकिंग साउंड के साथ, जब मुंह खोलने बंद करने में क्लिकिंग साउंड के साथ साथ मुंह खोलने में कमी होना, या दांत चबाने में दर्द होना, या मांसपेशियों में दर्द होना, ऐसा कुछ देखा जाता है, तो वो क्लिकिंग को सामान्य नहीं माना जाता है, और एक डिटेल्ड इवेल्युएशन करके उसके कारण तक पहुँचने की ज़रूरत होती है।
1: जी यहाँ पर रुकना चाहेंगे, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो शायद फिर से हमसे संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपने क्वेश्चंस को जारी रखते हुए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को जो है खाना चबाते समय या मुंह खोलते समय जबड़े में दर्द होता है, इसके जो है मुख्य कारण क्या हो सकते हैं?
0: अब जनरली दांतों में दर्द से भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, दांतों के इन्फेक्शन, जिससे कि मसूड़े में इन्फेक्शन हो और उसका एक कंपोनेंट जबड़े में पहुंचे, तो इससे भी दर्द हो सकता है।
1: जी
0: इसके अलावा च्यूइंग मसल्स का थकावट होना, जैसे कि अगर कोई कोई पेशेंट्स हैं जो दांत पीसने का हैबिट होता है, तो इनमें मांसपेशियों में एक फैटीग देखा जाता है, तो
1: जी
0: इसके वजह से भी ये कारण हो सकते हैं। इसके अलावा विजडम टीथ, जो अकल का दांत होता है, वो निकलने के टाइम में भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा पेन को खाली देखकर डायग्नोसिस नहीं करते हैं, उसके कारण तक जानना होता है, जिसके
1: जी
0: लिए एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है।
1: मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या तनाव और चिंता की वजह से भी व्यक्ति जो है दांत या जबड़े में दर्द की समस्या का शिकार हो सकते हैं?
0: हाँ, बहुत बार ये देखा जाता है कि जब एक इंसान तनाव में हो, तो जाने अनजाने में उनके दांत पीसना शुरू करते हैं।

0: ये दांत पीसने से आगे चलकर जॉ की मसल्स में तनाव बढ़ता है, साथ
1: जी
0: ही साथ दांतों में घिसना भी देखा जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है और बड़े बड़े प्रॉब्लम जो जाकर जॉइंट की प्रॉब्लम तक रुक सकता है, तो ये सब देखा जाता है। तो तनाव को हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरह देखते हैं और हमारे डेंटल कंसल्टेशन में हम हमेशा तनाव या स्ट्रेस को रिड्यूस करने को भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के तरह देखते हैं, जिससे कि ओरल हेल्थ खाली नहीं, ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहे।
1: जी एक कॉल ले लेते हैं, लाइन पे हैं शायद। हेलो हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब, हम जो है तनाव की बात करें, जो स्ट्रेस जो लोग रहते हैं, क्या उसका असर भी जो है दांतों पे पड़ता है क्या?
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल पड़ता है। ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारे बॉडी में तरह तरह के तरीके से दिखता है।
1: जी
0: एक्चुअली ओरल कैविटी या जो हमारा मुंह होता है ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। कई तरह के स्ट्रेस होते हैं जो हमें मुंह में पहले दिखाई देते हैं,
1: जी
0: जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन के आंसर देते समय बताया कि नॉर्मली स्ट्रेस से दांत पीसने का एक हैबिट शुरू होता है
1: जी
0: जो आगे चल के तकलीफ कर सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेस के वजह से ऐसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस होते हैं जिसमें बॉडी के सेल्स ही अपने दूसरे सेल्स को प्रॉब्लमेटिक के तरह देखते हैं और उसके अगेंस्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो ये सब भी स्ट्रेस के कारण मुंह में या ओवरऑल हेल्थ में होने वाले प्रॉब्लम्स हैं।
1: जी जी मेरा अगला सवाल है, क्या दांतों की गलत अलाइनमेंट या टेढ़े मेढ़े दांत जो है जबड़े में और चेहरे की बनावट को प्रभावित कर सकते हैं क्या?
0: ज़रूर कर सकते हैं, जब खासकर जबकि ये टेढ़े मेढ़े दांत अकेले नहीं हो, टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ में जबड़े की अलाइनमेंट के भी प्रॉब्लम हो। ज़्यादातर देखा जाता है कि जब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो तीन चार कंडीशन हो सकता है, जिसे हम सीवियर क्राउडिंग बोलते हैं, जहाँ पे दांत निकलने के लिए जगह नहीं होता है और
1: जी
0: दांत सारे आगे पीछे अलाइंड होते हैं, या डीप बाइट हो सकता है या ओपन बाइट हो सकता है जिसमें दांत और दांत कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इस चीज़ ये सारे कंडीशन में जो हमारा फेस होता है उसका जो अनुपात होता है या प्रोपोर्शन होता है वो चेंज हो जाता है और इससे आगे चल के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले हम डीपली असेस करते हैं, तो अगर छोटी खाली दांतों का प्रॉब्लम है तो हम उसे ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट या तो ब्रेसेस या अलाइनस लगा के ठीक कर सकते हैं,
1: जी
0: जबकि अगर थोड़ा गंभीर समस्या हो तो ऑर्थोडॉन्टिक ट्रीटमेंट के साथ में जॉ के जबड़ों को रीअलाइन करने की सर्जरी, जिसे हम ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी भी कहते हैं,
1: जी
0: इसका भी उपयोग किया जा सकता है।
1: जी क्या बचपन में दांतों और जबड़े की सही देखभाल ना होने का असर बड़े होने पर चेहरे की जो बनावट है उस पर पड़ सकता है क्या?
0: हाँ, कुछ सारे मामलों में ये होता है करके मैं नहीं बोलूँगा, बट
1: जी
0: कुछ मामले में ज़रूर होता है। बचपन में जो जॉस होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और दूध के दांत आते हैं, उनका रिप्लेस वो जाते हैं और उनका रिप्लेसमेंट नए परमानेंट दांतों से होता है। अगर बचपन में किसी बच्चे को कुछ हैबिट हो, जैसे कि माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना, या थंब सकिंग, अंगूठे को चूसना, और लिप बाइटिंग, जो कि हम होंठ को चबाते रहने का अगर हैबिट बच्चों को होता है, लंबे टाइम तक वो करते हैं, तो इससे जो हमारा फेशियल प्रोपोर्शन होता है, जॉ की ग्रोथ होती है, इसको हैम्पर्ड हो जाता है या इसमें एक ब्रेक आता है,
1: जी
0: तो इसके वजह से आगे परमानेंट दांत जो आते हैं उनकी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है। इसके अलावा बचपन के दांत में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जिसे बराबर ट्रीट नहीं किया गया है, जो इन्फेक्शन तक बढ़ सकते हैं, तो आने वाले दांतों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आने वाले दांत के पोजीशन में भी चेंजेस हो सकती है, जो आगे चल के बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत को रख सकता है।
1: जी अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठने पर जबड़े में दर्द या सिर दर्द रहता है, तो क्या इसका संबंध रात में जो है दांत पीसते हैं लोग, वो हो सकते हैं क्या?
0: हाँ जी बिल्कुल, इससे हम मेडिकल टर्म में ब्रक्सिज्म कहते हैं,
1: जी
0: जिसमें आप एक आदमी रात को सोते समय अनजाने में दांत को पीसते रहता है। जब ये पीसना कंटिन्यूस होता है तो नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं रात के टाइम पे
1: जी
0: बॉडी को रेस्ट के लिए, तो जब रात के टाइम में बॉडी का रेस्ट नहीं मिलता है और ये मसल्स दांत चबाते रहते हैं, तो जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें लोड बढ़ता है,
1: जी
0: तो वो कॉन्स्टेंटली लोड बढ़ने के कारण जबड़े में मसूड़

0: में जब जब अगला जब यूज़ करते हैं तो एक फटीग दिखता है, और ये ज़्यादातर कान दर्द और सिर दर्द की तरह हो सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लेंचिंग का हैबिट होता है, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हैं विद सीवियर हेडेक एंड अ डिस्कम्फर्ट, और आगे चबाने के टाइम में दिक्कत होती है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि वो जो हैबिट होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है और ये हैबिट को ब्रेक करना होता है। यूजुअली हम डेंटिस्ट एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद एक एलाइनर होता है, या तो उसे नाइट गार्ड बोलते हैं, इस नाइट गार्ड को रखते हैं ताकि ये जो दांत पीसने का हैबिट थोड़ा कम हो जाए।
1: जी मेरा अगला सवाल है कि दांतों की समस्या के वजह से जो है चेहरे में किस हिस्से में जो है दर्द महसूस हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे?
0: एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि दांत, हमारे दांत, जबड़े और चेहरे एक ही फंक्शनल यूनिट में आते हैं। तो दांत दर्द सिर्फ वो जगह पे खाली नहीं दिखाई देता है। दांत दर्द की वजह से दांतों की दर्द तो होती ही है, उसके अलावा मसूड़े में सूजन हो सकता है, मसूड़ों में दर्द हो सकता है, ये इन्फेक्शन जो मसूड़े से जबड़े में जा सकता है, जिसमें जबड़े में सूजन दिखाई दे सकती है, दर्द हो सकती है। अगला स्टेज मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, और ये जॉइंट पेन तक लेके जा सकता है, जिसके वजह से बाकी आपको पूरे चेहरे में या एक साइड के चेहरे में दर्द दिखाई दे सकता है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि दर्द का स्वभाव देख के हम डायग्नोसिस में नहीं पहुंचते हैं, या उसका लोकेशन देख के डायग्नोसिस में नहीं पहुंचते हैं। सारे कंडीशन को ध्यान से देखना होता है और सोर्स को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
1: जी क्या अक्कल दांत निकलने के दौरान जबड़े और चेहरे में दर्द या सूजन होना क्या सामान्य है, और कब इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: हाँ, एक्चुअली हल्का डिस्कम्फर्ट तो होता है, और ये ज़्यादातर तब होता है जब हमारा जो दांत होता है, वे अक्कल का दांत होता है, वो आधा रास्ता बाहर आया हो, जिसे हम पार्शली इरप्टेड कहते हैं। तो जब ऐसे होता है तो बार बार स्वेलिंग देखा जाता है, पेन हो सकता है, पीप निकलने के चांसेस है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, और बुखार भी आ सकता है। इसके साथ में आगे चल के जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यूजुअली एक स्वेलिंग भी दिखाई देता है, साथ में बुखार भी हो सकता है।
1: जी
0: यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि पहला पेन यूजुअली दांत बाहर निकलने जब ट्राई करता है तो तब होता है, वो यूजुअली सबसाइड हो जाता है। उसके लिए हम वार्म सलाइन गार्गल देते हैं, हल्के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करने को बोलते हैं, ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक से दवाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि दो बार से ज़्यादा अगर पेन आ गया या दूसरे बार आ गया तो ये बॉडी का साइन है कि यह आपको निकलवाना है,
1: जी
0: तो तब एक डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर या ओरल सर्जन इसके लिए बेस्ट होते हैं। उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट अगर होता है, दांत बाहर नहीं आते हैं, इसीलिए एक विजडम टीथ या अकल का दांत बाहर नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए जबड़े में जगह नहीं होता है।
1: जी
0: तो उसको निकालने के लिए भी एक स्पेशलिस्ट का अप्रोच चाहिए होता है, जिसमें हम मसूड़े को काटते हैं, दांत को विजुअलाइज करना होता है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो मोटर चला के सर्जरी करके दांत को काट के, या तो हड्डी को थोड़ा शेप करके बाहर निकालना होता है।
1: जी दांत निकलवाने या दांतों के इलाज के बाद जबड़े में दर्द कितने समय तक सामान्य माना जा सकता है?
0: तो ये मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि दांत निकालने के बाद जो घाव होता है वो बेसिकली एक चोट की तरह होता है,
1: जी
0: और हमारा बॉडी का बनावट ऐसा होता है कि जब भी कोई चोट लगे, एक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, जो कि बॉडी का एक रिपेयर प्रोसेस है, वो स्टार्ट होता है, और ये प्रोसेस इमीडिएटली आपके चोट लगने के बाद, या इस केस में दांत निकालने के बाद से शुरू होता है, और ये 24 to 48 hours तक चलता है।
1: जी
0: तो हम मान के चलते हैं कि जो दिक्कत होता है, हल्का डिस्कम्फर्ट होता है, वो 3 दिन के लिए रहता है, और हमेशा हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये जो दिक्कत होता है वो डे बाई डे कम होते जाता है। बट अगर आपको ये तकलीफ़ कम नहीं हो रही है, 3 दिन के बाद भी या 3 या 4 दिन के बाद भी दर्द का जो स्केल है वो बढ़ रहा है,
1: जी
0: या मुंह में कुछ बैड टेस्ट आ रहा है, या आपको मुंह खोलने बंद करने में कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: जी
0: यूजुअली मैं एक रूल बोलता हूँ कि 3 डेज़ का, दवाई भी हम 3 डेज़ का देते हैं। अब 3 डेज़ में यूजुअली पेन कम हो जाता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपने देखभाल भी वैसी करी हो।
1: जी
0: अगर ज़्यादातर या पेशेंट्स अगर स्मोकिंग सब करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तकलीफ बढ़ सकता है।
1: मेरा अगला सवाल है, क्या गलत गलत तरीके से चबाने या सिर्फ एक तरफ से खाना खाने की आदत जो जबड़े की मांसपेशियों और चेहरे पर असर डाल सकती है क्या?
0: ये एक कॉमन चीज़ हम देखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि एक दांत के दर्द से स्टार्ट होता है और पेशेंट जनरली वो साइड को यूज़ करना छोड़ देता है। तो जब हम एक साइड से खाते हैं, जैसे

0: मैंने बोला उस साइड में जो दांत का घिसना ज़्यादा होता है, उसके अलावा जो जॉइंट होता है वो जॉइंट में लोड ज़्यादा पड़ता है और दूसरे जॉइंट में लोड कम पड़ता है। बेसिकली हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि हमारे बॉडी के सारे जो जॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, एक्सेप्ट ये जॉ के जॉइंट। ये ऐसे बने हैं कि खुलने के टाइम और बंद होने के टाइम दोनों साइड के जॉइंट एक साथ काम करते हैं। तो जब हम यूज़ भी करते हैं तो इन्हें एक तरह से यूज़ करना होता है। जब
1: जी
0: एक साइड में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ता है, या लंबे समय तक ऐसे यूज़ करने से उस जॉइंट में चेंजेस आते हैं जो आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे साइड में चबाने की तकलीफ़ होना, दूसरे साइड में मसूड़े में तकलीफ़ होना। और एक चीज़ देखा जाता है कि जो एक साइड हम जब यूज़ करते हैं जबड़े के एक साइड को, तो हमारी जो थूक होती है वो आके वो एरिया को क्लीन करती है।
1: जी
0: तो जब हम एक साइड यूज़ नहीं करते हैं तो उस साइड में पत्थर जमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि यूजुअली इनवाइट कर रहा है कि दांत को ख़राब करने को।
1: जी बच्चों के चेहरे में जबड़े के विकास को देखते हुए पहली बार जो है डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए?
0: यूजुअली मैं कहता हूँ बच्चों में 4 से 6 महीने में पहला दांत आता है, तो यूजुअली मैं कहता हूँ कि पहले दांत आने के 6 महीने के अंदर, तो यूजुअली मैक्सिमम 1 साल से पहले आपको पहला एक डेंटल चेकअप बच्चे का करा लेना चाहिए। इसके और भी बेनिफिट्स हैं कि खाली ये जब आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हो बच्चों को लेके, तो खाली वो डेंटिस्ट खाली अपने बच्चों के दांत को या दांतों में सड़न नहीं देखता है, वो दांतों के आने के तरीके, आने की जगह, उसकी पोजीशन को भी ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा बाइट कैसे हो रही है, कुछ हैबिट्स है, या हमारे जबड़े की जो बच्चे के जो जबड़े हैं वो नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं भी डेंटिस्ट देखते हैं। और
1: जी
0: ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छोटे छोटे कंसल्टेशन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड कर दिया जाए तो ये आगे चल के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं बनते हैं।
1: जी शुरुआती अगर इसकी देखभाल कर ले तो आगे
0: हाँ
1: बढ़ेंगे नहीं।
0: या
1: अगर किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट में जबड़े के आकार या दांतों की वजह से असमानता दिखाई देती है तो इसके लिए कौन-कौन से उपचार उपलब्ध हैं?
0: ये एक्चुअली डिपेंड करता है सिवियरिटी पे
1: जी
0: और एज पे भी। तो अगर छोटे मोटे दांत टेढ़े हैं, छोटा अलाइनमेंट का ही प्रॉब्लम है और खाली दांतों में प्रॉब्लम है, तो हम इसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ब्रेसेस या क्लियर अलाइनर्स के उपयोग से सीधा कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, जब हमने एक एंटिसिपेट किया है कि ये बच्चे में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, तो ग्रोइंग स्टेज में हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम बच्चों के जबड़े को डायरेक्ट कर पाते हैं एक तरीके से ग्रो करने के लिए, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर एडल्ट्स में है, जैसे कि हम 18 ईयर्स के ऊपर है, और उन पेशेंट्स में अगर दांतों के अलावा जबड़े में भी अगर अलाइनमेंट का चेंजेस हो, तो उसमें हम यूजुअली ऑर्थोडोंटिक, जैसे कि मैंने कहा ब्रेसेस और अलाइनर्स के अलावा, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी जिसमें हम जबड़े की पोजीशन को अलाइन करते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: जी यहाँ पे रुकना चाहेंगे, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो,
1: हाँ आवाज़ आ रही है आपको?
0: हेलो,
1: आवाज़ आ रही है आपको?
2: हेलो,
1: हाँ कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको?
2: हेलो,
1: आवाज़ आ रही है?
0: हेलो सर, बोलिए सर, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए सर।
1: अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं, आपको आवाज़ आ रही है? शायद उनको सुनाई नहीं आ रहे, चलिए कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे कि जो है चेहरे की बनावट में जबड़े के आकार जो है उनकी असमानता दिखाई देती है, इसके क्या उपचार उपलब्ध हैं?
0: तो जैसे मैंने कहा कि अगर खाली दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ब्रेसेस या क्लिप लगा के उसे ठीक कर सकते हैं, जबकि अगर ये प्रॉब्लम बच्चों में देखा जा रहा है कि खाली दांत टेढ़े मेढ़े नहीं, जबड़े में भी ग्रोथ की डेफिशिएंसी है या ग्रोथ की कमी है, तो उस स्टेज में हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लायंस लेते हैं, जिसमें हम अब बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए,
1: जी
0: जहाँ पे डिफिशेंसी है वहाँ पे कम करने को। और जब सीनियर पेशेंट्स होते हैं जिनमें दांतों की अलाइनमेंट तो टेढ़ी होती है, साथ में अगर जबड़े की भी पोजीशन डिफरेंट हो,
1: जी
0: तो वैसे केसेस में हम ऑर्थोडोंट

0: एक ट्रीटमेंट के साथ में ऑर्थोगनैटिक सर्जरी, जिसमें हम जॉ के अलाइनमेंट को भी चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं।
1: रोज़मर्रा में जो है दांत और जबड़े को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और किन आदतों से बचना चाहिए?
0: ये मेरा
2: हेलो
1: हेलो, आवाज़ आ रही है आपको?
2: हेलो समाना जी नमस्कार, मैं धर्मवीर दिल्ली से बात कर रहा हूँ
1: जी। आपको आवाज़ आ रही है?
2: डॉक्टर साहब से दो तीन बातें छोटी छोटी पूछनी है।
0: हाँ,
1: जी पूछिए।
2: कि पहली तो अगर हमें क्या डेली नमक के पानी से गरारे करने चाहिए, दर्द हो ना हो। दूसरा सवाल ये है कि दर्द अगर हो तो पेट्रोल डीटी का ले लेनी चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति का कोई साइज मुंह का किसी कारण वो एक्सीडेंट के कारण छोटा हो जाए तो पीछे के दांत निकालने में क्या सर्जरी करनी पड़ती है?
0: अच्छा, तो ये तीनों का
2: हेलो
0: हेलो हाँ, ये तीनों का अलग अलग। पहले तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको पेन हो तो किट्रोल डीटी नहीं खाना चाहिए। आपको पेन हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर डॉक्टर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो मैं पेशेंट को यूजुअली सजेस्ट करता हूँ एक पेन किलर ले लेने को, लेकिन मैं हमेशा एडवाइज़ करता हूँ कि दवाई का स्टार्ट अपने आप से करने से अच्छा डॉक्टर को दिखाने के बाद करना होता है। और इसके अलावा जैसा आप पूछ रहे थे कि गार्गल करने के बारे में पूछ रहे थे, मैं तो ये सबको सजेस्ट करता हूँ, खुद मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना हर दिन सेहत के लिए अच्छा होता है। साथ में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में गार्गल करने के बाद आप हाथ से ब्रश करने के बाद हाथ से मसूड़ों को मसाज करना भी अच्छा होता है।
1: धर्मवीर जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रोज़मर्रा में जो है दांत और जबड़े के स्वस्थ रखने के लिए कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए।
0: तो सबसे पहले दिन में दो बार एक फ्लूराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा दांतों के बीचों में क्लीनिंग करना, जिसे हम डेंटल फ्लॉसिंग भी कहते हैं, वो भी ज़रूरी हो जाता है। हर दिन मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि दो बार ब्रश करना और फ्लॉसिंग एस्केपेबल नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना ही करना है। इसके अलावा एक्सेसिव शुगर इनटेक और टोबैको तंबाकू का उपयोग से बचें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नियमित डेंटल चेकअप, अपने एंड से आप कितना भी अच्छा रखें, एक नियमित डेंटल चेकअप वंस इन अ ईयर हो तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मैं थोड़ा टिप्स देना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि आदमी यूजुअली बॉटल खोलने के लिए दांतों को उपयोग करते हैं, इन सब चीज़ों से बचना अच्छा होता है। बहुत हार्ड चीज़ को जब चबाते हैं तो ये दांतों में माइनर माइनर क्रैक्स लेके आता है, जो आगे चल के फ्रैक्चर बन सकता है या तो सेंसिटिविटी का कारण हो सकता है और वो कॉन्स्टेंटली एक तकलीफ में आपको डाल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रश्न तो बहुत है लेकिन वक्त की कमी है, तो ऐसे में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले मैं यही लाइन को दोहराना चाहूँगा जहाँ से मैंने शुरू किया था कि हम अक्सर ओरल हेल्थ को दांतों की सेहत तक सीमित रखते हैं, लेकिन वास्तव में दांत, जबड़े और चेहरे एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं और हर चीज़ का ध्यान जरूरी होता है। साथ ही साथ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि दांत में दर्द होने का इंतज़ार मत कीजिए। आपको ओरल हेल्थ को अपनी ओवरऑल हेल्थ का हिस्सा ही मानना चाहिए और अच्छे से ब्रशिंग, प्रॉपर ओरल हाइजीन, टोबैको तंबाकू से दूरी और हेल्थी डाइट और एक रेगुलर डेंटल चेकअप बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई अनयूजुअल चेंज दिखता है, जैसे कि बॉडी में परसिस्टेंट पेन हो रहा हो, लंबे टाइम से पेन हो रहा हो, कोई सूजन हो रहा हो या कोई अल्सर है जो अनएक्सप्लेन्ड है, आ जा रहा है या आ रहा है, दो हफ्ते से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर जितना जल्दी हो सके एक डेंटल कंसल्टेशन कराइए और अपने समस्याओं को जल्द ही ठीक करने का कोशिश।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए और दांत, जबड़ा और सेहत, चेहरे की सेहत विषय से जुड़ी ढेरों जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम आज आपने जाना कि दांतों की सेहत सिर्फ खूबसूरत मुस्कान तक सीमित नहीं है। दांत, जबड़ा और चेहरे की संरचना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। समय पर जांच और सही सलाह कई बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इसी संदेश के साथ आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम से हमें

दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, स्वस्थ दांत, स्वस्थ जबड़ा और स्वस्थ चेहरा बेहतर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की पहचान है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबाना, होगी फिर मुलाकात अगले शनिवार इसी वक्त एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। विषय था दांत, जबड़ा और चेहरे की सेहत। विशेषज्ञ थे ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर विशाल एस नायर। तकनीकी सहयोग दिया बी एन किशोर ने। वॉइस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी मीनो प्रकाश।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लालकिला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं। 15

0: अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी का

0: कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेनजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने

0: संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says reforms are not compulsion but a commitment and conviction for government, asserts its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Home Minister Amit Shah hails West Bengal government for handing over 1,129 acres of land to BSF and SSB for India-Bangladesh border fencing within 45 days of coming to power. India and Nepal reaffirm commitment to strengthen bilateral cooperation in border management and security. BRICS tourism ministers adopt Jaipur Declaration, focusing on sustainable tourism, AI integration and seamless travel. Indian women's doubles pair of Treza Jolly and Gayatri Gopichand to take on top seed Chinese duo in semi-finals of BWF World Championships in Delhi. And in Hockey World Cup, Indian men's team to begin their second stage campaign against hosts Netherlands at Amstelveen this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion, but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next generation reforms at the policy level to secure the country's future.
3: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ रेगुलेशन नहीं बदल रहे हैं, हम रेगुलेशन की पूरी फिलॉसफी बदल रहे हैं।
2: The Prime Minister pointed out that his government is not merely changing regulations, but is changing the entire philosophy behind them. He said that earlier, the approach to regulations was prohibited unless permitted. Mr. Modi said the license raj under earlier governments contributed to unemployment, while his government's production-linked incentive model is creating new opportunities. The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges. He said that even in such circumstances, the world continues to see India as a bright spot of hope and growth.

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को

0: एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है. कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एन्जॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है. इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूँ तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है. यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं. बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है. यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है. प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं. यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है. तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ. सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है. वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं. और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं. वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो. सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें. थैंक यू.
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया.
2: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में सलमा आगा को सुन रहे हैं.

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे मेहदी हसन और सलमा आगा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत सनम तेरी कसम फिल्म से। स्वर दिया है आर डी बर्मन ने, बोल गुलशन बावरा के हैं, वाधुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

0: तो याद रखना दोस्त, खुद के लिए और अपनों के लिए लेनी है दवा रोज।
1: कौन सी?
0: अरे वही
2: ARTI। तो ARTI बोलो, रोज लिया क्या?
3: HIV/AIDS के साथ स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए ARTI रोज लिया क्या? नैको व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ब्रेक के बाद फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। साहिर का लिखा एवं रवि का संगीत बत किया हुआ, आइए सुनते हैं हम राज फिल्म का गाना। स्वर दिया है महेंद्र कपूर ने।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो, सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये था रजनी गंधा फिल्म का गाना, जिसे लिखा था योगेश ने व संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। श्रोताओं, और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार की, बोल अनजान की व धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: श्रोताओं, आपको बता दें, सवेरे 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों के कार्यक्रम कशिश का। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉम्बे S. जयश्री का कर्नाटक शैली में गायन।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का आगाज करते हैं शादी के साइड इफेक्ट्स फिल्म के साथ। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है शाहिद माल्या, पूर्वी कौतिश और आलम ने। संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का है तथा बोल मायापुरी के हैं।
1: ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

श्रोताओं, कशिश कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं स्वीटी विट्स एनआरआई फिल्म से। इस गीत को स्वर दिया है अरमान मलिक आर्को और प्राकृति काकर ने। संगीतकार व गीतकार है आर्को।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, की एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चर

0: जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट्सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। श्रोताओं, कशिश कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब पेश है कौशिकी चक्रवर्ती और मालाबिका ब्रह्मा की आवाज़ों में एक गीत रचना। संगीतकार है सौमिक सेन तथा बोल नेहा साराफ ने लिखे हैं। फिल्म का नाम है गुलाब गैंग।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं जोड़ी ब्रेकर्स फिल्म से। इस गीत को गाया है बेनी दयाल, शिल्पा राव, बोल इरशाद कामिल के हैं तथा संगीत सालिम सुलेमान का है।

कशिश कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं रागनी MMS 2 फिल्म से। इस गीत को गाया है कनिका कपूर मीट ब्रोस अनजान। गीतकार हैं कुमार तथा संगीत मीट ब्रोस अनजान का है।

श्रोताओं, आइए कशिश कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं अली जफर और फरीहा परवेज़ की आवाज़ों में। संगीत रचना अली जफर की है व बोल अकिल रूबी के हैं। फिल्म का नाम है टोटल सियप्पा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं सिंघम फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और अजय गोंगावाले ने। इस गीत के संगीतकार हैं अजय अतुल और गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे।

कशिश कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं यंगिस्तान फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है सिराज उपाल ने।

श्रोताओं, अभी आप ओ तेरी फिल्म का एक गीत सुन रहे थे जिसके संगीतकार थे जी जे सिंह। इस गीत को गाया था जी जे सिंह, जसप्रीत जास, नीति मोहन ने, बोल कुमार के थे। अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, मैं तेरा हीरो फिल्म से। इस गीत को गाया है नीति मोहन और जावेद अली ने, बोल कौसर मुनीर और दानिश के हैं तथा संगीत साजिद वाजिद का है।

श्रोताओं, आइए कशिश कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनते हैं टू स्टेट फिल्म से। इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह, चिन्मया स्प्रधा ने, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं तथा संगीत शंकर ईशान लॉय के हैं।

टू स्टेट फिल्म के इस गीत के साथ ही कशिश कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अगला कार्यक्रम सुनते हैं, गीत गुंजन।

श्रोताओं, गीत गुंजन कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार होंगे कुमार खानू और अलका याग्निक। आज हम इनके गीतों को सुनेंगे। कार्यक्रम का आगाज करते हैं सोल्जर फिल्म के एक गीत के साथ।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस सूचना के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को, एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत इजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट

0: में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इट सेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।

श्रोताओं, गीत गुंजन कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं चमत्कार फिल्म का एक गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं जीत फिल्म से अगला गीत। इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, बोल समीर के हैं व संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, आइए गीत गुंजन कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं। गुलाम फिल्म से इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, बोल समीर के हैं तथा संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, गुलाम फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हमारा गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। आइए संगीत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम गीत अतीत।

0: श्रोताओं, इस कार्यक्रम गीत अतीत में हम आपको सुनवाएंगे बीते दौर के कुछ ऐसे सदाबहार गीत जिन्होंने संगीत प्रेमियों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए सुनते हैं पहला गीत।
1: चोरी चोरी आके शोक।

कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं 20 साल बाद फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है हेमंत कुमार ने, बोल शकील बादूनी के है तथा संगीत हेमंत कुमार का है।

श्रोताओं, आइए गीत अतीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं प्यार के राही फिल्म से। इस गीत को गाया है आरती मुखर्जी ने, बोल माया गोविंद के हैं तथा संगीत अजीज नादान का है।

0: श्रोताओं, गीत अतीत कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूं तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप आएँ, इस पर कॉन्टेंट बनाएँ और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कॉन्टेंट बनाएँ, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिट

0: कंट्री साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेज OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया। श्रोताओं, गीत अतीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं गीत गाता चल फिल्म का एक गीत। इसे गाया है आरती मुखर्जी ने। संगीतकार व गीतकार हैं रविंद्र जैन।

श्रोताओं, आइए गीत अतीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, बिन बादल बरसात से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल शकीन बादूनी का है तथा संगीत हेमंत कुमार का है।

श्रोताओं, गीत अतीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं हिंदुस्तान की कसम फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और राजेंद्र मेहता ने।

श्रोताओं, आइए अगला गीत सुनते हैं कोहरा फिल्म से। इस गीत को गाया है हेमंत कुमार ने, बोल कैव आज़मी के है तथा संगीत हेमंत कुमार का है।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब पेश है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണിയുടെ ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से सुन बोल रहे हैं। अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। अब से कुछ ही क्षणों में समाचारों का प्रसारण होगा, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के

0: स्थित ब्यूरो की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India has raised the issue of 2 hijacked foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board with Somali authorities. The vessels carrying 16 Indian seafarers on board MT Cebu and 6 Indian seafarers on board MV Lutuf were hijacked

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम लौटेंगे इस अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को, एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू दी एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पस नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूँ तो यहाँ पे

0: ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं। बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं, और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इसमें कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं। और इससे कैश प्राइजेस भी हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी, और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय, और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: श्रोताओं, आइए सुगम संगीत के कार्यक्रम में अब सुनते हैं सीमा शर्मा को।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में ताहिरा सायद और सीमा शर्मा को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं और अब आरंभ होता है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। इस कार्यक्रम में हम बजाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गीत बिल्कुल आपके नाम पर। चाहे आप कहाँ भी कहीं पर भी हो, घर पर हो, सफ़र में हो या अपने काम पर, उम्मीद है आपके गीत आपको चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। तो चलिए आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं। ये है जिला पश्चिमी सिंहभूमि चायबसा झारखंड से। शिवा, प्रेम, संगीता, लिपि और दीपाली व संपूर्ण गोप परिवार ये सुनना चाहते हैं एक लड़का एक लड़की फिल्म का एक गीत। तो चलिए देर ना करते हुए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगला पैगाम हमें आया है भोपालगढ़ राजस्थान से। ये हैं धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहर व छापा परिवार। ये सुनना चाहते हैं भीगी पल के फिल्म का एक गीत। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations. Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: श्रोताओं, आपके नाम फिल्मी पैगाम में आपका पुनः स्वागत है। एक दूसरे के लिए इस फिल्म की फरमाइश हमें आई है MLB रोड ग्वालियर से। ये है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, के एस के पप्पी। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत। तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हमें आई है मजनू का टीला से। कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ये सुनना चाहते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत। तो चलिए सुनते हैं इनके पसंद।

श्रोताओं, किशोर कुमार के गीत की फरमाइश हमें आई है। जिला नांदेड़, येताल, महाराष्ट्र से। ये है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल। ये सुनना चाहते हैं पड़ोसन फिल्म का ये गीत। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आइए अगली फरमाइश हमें आई है गांव टुरोलवाल जिला नवाशहर पंजाब से। ये है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी व संपूर्ण थांदी परिवार। ये सुनना चाहते हैं मेरे सनम फिल्म का एक गीत। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

तो दोस्तों, आज के आपके नाम फिल्मी पैगाम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके पसंदीदा गीतों ने आपका दिन को और भी खुशनुमा बना दिया होगा। अगर आप भी चाहते हैं आपके मनपसंद गीत इस कार्यक्रम में सुनना, तो हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। नंबर है 9474234000। तो बस कार्यक्रम से अब विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफिनामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की।
2: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
2: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए

0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
1: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
2: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
3: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12

0: जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
3: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
1: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थान पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 25 अगस्त तक समुद्र में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:33 होने वाले हैं। अब हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी संगीत कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: हद से कम पम परम। क्या पता हमें है कहानियां हैं कहानी में हम पम परम।
1: घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज हम इस कार्यक्रम में तमाशा, MS धोनी, वेकअप सिद्ध, लाल सिंह चड्डा, अवारापन, हाफ गर्लफ्रेंड, हमारी अधूरी कहानी, जीनियस, ब्लड मनी, मर्डर और मशीन फिल्म के गीत सुने। अब इसी के साथ ही हमारा नॉन स्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। पेश है सैनिकों के लिए विशेष कार्यक्रम। आइए अपने वीर सैनिकों को सलाम करते हुए सुनते हैं उनके सम्मान में समर्पित गीत।

अभी आप क्रांति फिल्म का गीत सुन रहे थे, जिसे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया था। बोल मनोज मुंतासिर के थे। अब अगला गीत सुनिए, स्वीकार किया मैंने फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल निदा फैजाली के हैं।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं जिद फिल्म से। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने, बोल रविंद्र जैन के हैं।

आइए अगला गीत सुनते हैं सूर्यवंशी फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और उदित नारायण और साथियों ने। संगीत आनंद मिलन का है तथा बोल तैयार किया है कुलवंत जानी ने।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। हमारी आज की इस दूसरी सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिन्ला में नीरोक रहमांग इंग्रे तक लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रामांग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्नी निकुबारी प्रोग्राम तहांग।
2: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: Minka Talunhi Ingilahara. Iyalang am celebration ngam National Sports Day tanit kanyara na itaful ngam Deputy Education Office Wimberley Kanj na organize ngam Inda School Hockey Tournament in may tasatsi na nisamye hinye kiko nye taliktaku ip tanit na fan alango agas chingin halin langwaran kineken anindri ngam road race na ip tanit na majutir alango chingin tanit kanyara na itaful na ita taful kanyro talaharap Taful kanro talabuhu na ilngam mini stadium Wimberley Kanj. Tami school students ngam Wimberley Kanj educational zone. In minitarul kangin categories, open category 10 km in meki koonya, hek 5 km in meki kaana, hang me ayal ngam school mahakup. Under me 14 years, 5 km in meki koonya, ngat 5 km in meki kaana, in re

0: ngat intai hangam mana inram kalun tin ke ke tikak nye Suhail Ahmed farmais eni renu tazlin nye atamalu village ka nikbar ha yinga tel ngang ne sindangamu hek inure changrong itaka saata ita fan kan ro talahara ngayen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 16वीं कड़ी।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। सिगरेट के धुएं, सिगरेट स्मोक ने मानव जाति के लिए कभी भी अच्छा नहीं किया है। इसने लोगों की आशंका और जीवन शैली को सिर्फ अपमानित कर दिया है। लंबे समय से ये एक प्रवृत्ति यानी ट्रेंड के रूप में प्रयोग किया जाता था। तंबाकू, टुबैको से भरे पेपर के एक कटे हुए टुकड़ों को पकड़ना और समाप्त होने के बाद और धुएं को अनकंडीशन मैनर से उड़ा दिया जाता था। एक व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि प्रभाव इफेक्ट के बाद यह कितना बुरा है। तंबाकू की पत्तियों में मौजूद रसायन जो मस्तिष्क को एक उत्साहित स्थिति में बदल सकती है। निकोटीन जब सिगरेट के माध्यम से श्वास लेता है, फेफड़े के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के दाहिनी ओर जाता है ताकि इन्हें 10 सेकेंड के इनहलेशन के भीतर दिखाई जाता है। लेकिन जल्द ही आपको एहसास हो जाए कि वापस विड्रॉल के लक्षण उत्पन्न होने पर आप वास्तव में निकोटीन के आदि हो जाते हैं। और एक बार जब आपका शरीर धूम्रपान यानी स्मोकिंग के दूसरे शॉट के लिए लालच शुरू कर देता है तो आपके लिए रुकने में बहुत देर हो जाती है। असतन धुएं के खतरे के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं और भारत दुनिया के धूम्रपान करने वाले में से लगभग 12% है। सही समय पर उचित उपाय नहीं किए जाने पर यह संख्या प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसके बारे में लोगों को चेतावनी निश्चित रूप में एक बड़ा कदम है। इसके कई कारण है दोस्तों स्मोकिंग एडिक्शन के। धूम्रपान व्यसना यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लिए एकमात्र कारण तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। जब यह सिगरेट स्मोक किया जाता है तो ये रसायन यानी ये केमिकल ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एड्रेनल की रश का कारण बनता है। हमारे दिमाग में पाए जाने वाले हैप्पी हॉर्मोन्स जिसे डोपामिन कहा जाता है, ये निकोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस समय एक और स्तर तक पहुंचाते हैं। बस कुछ क्षणों के मजे के लिए यह बेहतर है कि आप

0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। धूम्रपान की लत के लक्षण ढूंढना काफ़ी आसान है। यदि आप चेन स्मोकर हैं, यदि आपने सामाजिक जीवन से खुद को दूर किया है, अगर सिगरेट छोड़ने के आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, आदत से छुटकारा पाने में कभी देर नहीं होती, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसका आदि न हो। एडिक्शन ने कभी भी अच्छा नहीं किया है, ना तो ये कभी भी होगा। इस लत से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपचार अपने सभी आदि मित्रों से दूर रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस और सिगरेट एडिक्ट्स। इसके अलावा उन्हें अपने बुरे प्रभाव से अवगत कराएं। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक स्वस्थ जीवन शैली है, अच्छा खाओ और लंबे समय तक अच्छी आराम नींद लें। समय परमिट होने पर अपने प्रियजनों के बारे में सोचें। स्मोकिंग की लत के लिए कुछ अन्य उपचार विकल्पों में हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम आदि है। निकोटिन की लत के लिए उपचार तरीकों के संयोजन में काम करता है। तो एक के लिए क्या काम कर सकता है जो दूसरे काम नहीं करेंगे। स्मोकिंग एडिक्शन से बचने के लिए प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है, यह आज तक सच है। जब आप जानते हैं कि आप किसके साथ खत्म होने जा रहे हैं, तो इसका आदि क्यों हो। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल रखना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रकार की लत के बाद के प्रभाव आफ्टर इफेक्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं। फेफड़ों के कैंसर, बैड ब्रेथ और अन्य पुरानी विकारें। स्मोकिंग करने की लत के बारे में लोगों को जागरूक करने की ओर रुख करें। लोगों को निकोटिन युक्त उत्पादों का उपयोग करने से रोकें। साथ ही पब्लिक प्लेसेस में निकोटिन के सख्त उपयोगी की दिशा में कुछ मानक नियम यानी नीतियां लागू की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज के पास निकोटिन के संबंध में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से धूम्रपान की लत फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के निकासे विथड्रॉल के बहुत सारे लक्षण होते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप निकोटिन के आदि हैं, इसका उपयोग करना बंद करना है। स्मोकिंग से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निकासी यानी फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स के लक्षण हैं। इसमें चिंता, रेस्टलेसनेस, इंसोमनिया, हेडेक्स, टेंशन के कुछ मामूली मामले हैं। यदि आप स्मोकिंग करने वाले हैं और एक ही चरण में जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पैनिक अटैक्स, दिल की धड़कन में वृद्धि, ट्रेमर्स, सांस लेने में कठिनाइयाँ और उल्टी छोड़ने के बाद के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। लेकिन ये ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत देर हो चुकी नहीं है। अपने प्रियजनों के साथ एक खुश भविष्य के लिए आज एक कदम उठाए, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दे। विद दिस वंडरफुल मैसेज, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, बाय।
1: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर होगा बांग्ला कार्यक्रम। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में श्री जगदीप हलदार से बातचीत होगी, बागवानी व फूलों की खेती से जुड़ी किसान। अंग्रेजी कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। 6:45 पर झलकी कार्यक्रम के तहत आप श्री जितेंद्र पाल सिंह द्वारा लिखा नाटक सुन पाएंगे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आनंद लीजिएगा 7:20 पर। युवानी कार्यक्रम के तहत 7:30 पर भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम होगी बातें मुलाकातें। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8:00। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा गौरव गान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्रेयास नारायण का कर्नाटक शैली में गायन सुन पाएंगे। रात्रि 11:00 हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कार्यक्रमों पर एक नजर। कल हमारी स्थानीय सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स का समय रहेगा 5:55 जिसमें जानकारी का विषय रहेगा आंवले की सफल खेती। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:10 पर। 6:15 पर होगा कार्यक्रम इंद्रधनुष जो केंद्रित होगा आसमान शीर्षक पर। रामचरितमानस गान का समय रहेगा 6:30। 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे उदित नारायण, अनूप जलोटा और ए हरिहरन। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9:00 रक्षाबंधन का पावन त्यौहार विषय पर चर्चा आप सुन पाएंगे। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 9:30 पर आप उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन सुन पाएंगे। हमारे लाइव फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण समय रहेगा 10:00। दिन में 11:00 सुनिए कार्यक्रम जनता जंक्शन। 11:30 पर विशु भटनागर और गुलाम अली द्वारा गजल आप सुनेंगे। तेलुगु कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 12:00। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा श्रुति मधुरम। सुगम संगीत कार्यक्रम में 1:10 पर फनकारा होंगी प्रणति देवी। 1:30 पर होगा कार्यक्रम घर संसार। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राथमिक चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि एफ एम 100

1.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसमें आप फिल्मी गीतों कार्यक्रम गीत लहरी तथा 3 बजे सुनेंगे कार्यक्रम एल्बम टाइम्स। हमारी दूसरी स्थानीय सभा की शुरुआत होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। 4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। फिल्में गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम का आनंद लीजिएगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत संगनी का प्रसारण समय रहेगा 6 बजे। शाम 6:30 पर धरती के गीत कार्यक्रम के तहत आप राजस्थानी लोकगीत सुन पाएंगे। तत्पश्चात होगा गौरव गान 6:45 पर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन पाएंगे। युवानी कार्यक्रम में 7:30 पर लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो म्यूजिक लवर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात्रि 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार। तत्पश्चात होगा गौरव कान। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका रेडियोस्कोप और रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन सुन पाएंगे तथा रात्रि 11 बजे मौसम की जानकारी के साथ ही हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी। अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:45 हुए हैं। लीजिए आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं मंजिल मंजिल फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की। मजरू सुल्तानपुरी के बोल व धुन बनाई है RD बर्मन ने।

0: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है गुलशन बावरा का लिखा सच्चा झूठा फिल्म का गीत। स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

अब प्रस्तुत है आनंद बख्शी की लिखी गीत रचना। फिल्म सोनी माहिवाल में इस गीत को संगीत से नवाजा है अनु मलिक ने। गायक कलाकार है आशा भोसले और अनवर।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे है। लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम। वणक्कम नेर्गले,

0: श्रोताओं, अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6 बजे है। लीजिए, प्रस्तुत है किसान भाइयों को समर्पित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा हम अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं खूबसूरत विचार के साथ। आज भी हम एक नेक विचार से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दीजिए, क्योंकि लोग अक्सर उसी का फायदा उठाते हैं जो हर परिस्थिति में दूसरों के लिए खड़ा रहता है। इसी नेक विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय क्या है, ये आपको बताना है। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहें, कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, हमारे अधिकतर किसान साथी फूलों की खेती करते हैं। साथियों, फूल जो है हर घर में काम में आता है, और फूल देखने में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। फूलों की महक हो या फूलों की सुंदरता हो, दोनों ही सबको भाती है। अगर फूलों की खेती हमारे किसान भाई करते हैं तो उन्हें अच्छा फायदा भी होगा। साथियों, फूलों की खेती से बढ़ती आमदनी और आत्मनिर्भरता, इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे हाथी टापू के श्री जगदीश हलदार जी के साथ। सबसे पहले उनका हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
6: धन्यवाद मैडम जी, हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
5: सबसे पहले आप बताइए फूलों की खेती के बारे में।
6: फूलों का खेती अंडमान के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में सबको जानकारी नहीं है।
5: बिल्कुल।
6: तो हाल ही में एक फ्लावर का, फूलों का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मेनलैंड से बहुत सारे लोग आए थे, वहाँ से बायर्स भी आए थे खरीदने के लिए
5: जी।
6: तो उन लोगों ने ये मार्केट सर्वे किया था, तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हमसे पूछा था कि क्या आपको पता है कि अंडमान में कितने का फूलों का बिजनेस होता है। तो वाकई में हम लोगों का ये पता नहीं था कि कितने का बिजनेस होता। देख, तो हम लोगों को इसका बारे में इतना अंदाजा नहीं था कि फूलों का मार्केटिंग कितना है करके। तो आपको सुनकर भी आश्चर्य होगा, हम सब भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि एक 10-12 ठेले में जो फूलों का बिक्री होता
5: जी,
6: उसमें एक साल का जो ट्रांजैक्शन है वो 10 करोड़ से ज़्यादा था। उसमें हमारे अंडमान का जो फूलों का योगदान 2% भी नहीं था। 98% जो फूल वो मेनलैंड से ही आता है, फ्लाइट में आता है, और यहाँ उनसे उन लोग बिजनेस करते, बिक्री करते हैं, माला वगैरह बनाते हैं, कुछ

0: एक आध किसानी कुछ गेंदे का फूल वगैरह सब करते हैं, और बाकी कोई कुछ करते नहीं है। सिर्फ जो जिनको ज़रूरत होता है वो फूलों का दुकान में जाते हैं, शादी ब्याह और जो जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए वहीं से फूल का लेना होता है, उन लोग खरीदते हैं।
1: जी
0: लेकिन अंडमान में काफ़ी इसका स्कोप हो सकता है, लेकिन हम किसान लोग भी उसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और जो है मार्केट में भी उतना हम लोगों ने कभी बेचने का कोशिश नहीं किया, तो हम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। और फिर इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें ये पता चला कि अंडमान में एक ऐसा फूल हो सकता है जो यहाँ से बहुत भारी मात्रा में निर्यात हो सकता है,
1: अच्छा
0: और उसका स्कोप जो है, उसका जो डिमांड जो है पूरा दुनिया भर में है। और वो एक स्पेशल तरह का फूल है जो भारत के और दूसरे जो क्षेत्र हैं वहाँ में इसका उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, क्योंकि
1: अच्छा
0: उसके लिए जो माकूल जलवायु चाहिए,
1: जी
0: वातावरण चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। बारिश वाला जगह चाहिए, वो जो बोलते हैं ना हम लोग जो जियोग्राफी में पढ़े हैं, भूगोल में
1: जी
0: जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र
1: जी जी जी
0: में है वो हमारा अंडमान निकोबार है, और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है। यहाँ का मिट्टी थोड़ा अलग किस्म का है, जो हमारे मुख्य भूमि भारत का वो जगह में नहीं है, वो केरल के कुछ तटीय क्षेत्र में है और चेन्नई के, तमिलनाडु के कुछ तटीय क्षेत्र में है,
1: जी
0: और अंडमान का तो पूरा क्षेत्र इसी तरह है। यहाँ प्राकृतिक रूप से वो फूल बहुत अच्छा से उगता है, और जिसका जानकारी इसी कॉन्फ्रेंस में हमारे कैरी के साइंटिस्ट ने बताया था, वैज्ञानिकों ने बताया था, कुछ एग्रीकल्चर हमारे जो कृषि विभाग के जो कुछ अधिकारी उन लोगों ने बताया था, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो है मेनलैंड से जो लोग आए थे जो साइंटिस्ट उन लोगों ने बताया, और जो बायर्स खरीदने आए थे जो बैंगलोर से और चेन्नई से थे, उन
1: जी
0: लोगों ने का कहना था यहाँ का जो फूलों का क्वालिटी है, उसका जो कलर है वो मेनलैंड का तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा है।
1: अच्छा
0: और जो फूल हमारा बगीचा में हम लगा के रखा था, एक जिला परिषद का ऑफिस से लेकर, मैं मुझे फूलों का शौक है और मेरा बचपन से हॉबी था, तो मैं उसको लेकर एक चारा लेके लगाया था, और देखा कि जैसे इन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी मतलब खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चे में हो सकता
1: हो
0: है।
1: सकता
0: मैं
1: है।
0: सिर्फ पौधा को लेकर एक पॉट में लगाया था, लेकिन बिना देख रेख के उस पॉट में इतना अच्छा से हुआ, पॉट को कवर करके एक झाड़ बन गया था, और उसमें मैं कुछ खाद पानी कुछ भी नहीं किया था। तो जब उन्होंने इसके बारे में बताया तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, एकदम कॉन्फिडेंट हो गया कि तो जब बिना कुछ के इतना अच्छा हो सकता है, तो अगर उस थोड़ा से मेहनत थोड़ा देखरेख करने से और अच्छा हो सकता है, तो मैं तो तुरंत उसको लगाने के लिए, उसका बागवानी करने के लिए एकदम तैयार हो गया था। और मैंने स्कूल में पढ़ा था, और कैरी का साइंटिस्ट लोगों ने हमारे सब्जी वगैरह के समय में भी उन लोगों ने मार्केटिंग के बारे में मुझे बहुत अच्छा से सिखाया था कि जो चीज़ बाजार में डिमांड है, जिसका डिमांड है उसी का हम लोगों को खेती करना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: उसका दाम अच्छा
1: दाम
0: मिलता
1: अच्छा
0: है।
1: मिलता है।
0: जो सभी उगाते हैं वही कॉमन चीज़ हम भी करें तो मार्केट में तो एक तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगा और हम लोगों को दाम भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग किसान लोग जो बहुत वैज्ञानिक पद्धति से और जानकारी लेके खेती नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने ये खेती करने के लिए एकदम तैयार हो गया था, और उनका चारा देने के लिए भी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे जो कैरी के साइंटिस्ट हैं उन लोग
1: जी
0: और कृषि विभाग के लोग भी तैयार थे देने के लिए, तो हमने उनसे कुछ चारा भी मिल गया था और बगान में इसको लगाया भी था। और ये प्रजाति है हेलिकोनिया प्रजाति,
1: हेलिकोनिया प्रजाति।
0: हेलिकोनिया
1: अच्छा
0: इसका नाम भी थोड़ा अलग तरह का
1: जी
0: लगता
1: जी
0: है,
1: जी
0: बहुत लोगों ने इसको बारे में सुना नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऑफिस में और कुछ कुछ लोगों के घरे में अनजान में भी उन लोग लगाते हैं। बहुत
1: अच्छा
0: सुंदर फूल होता है, और इसका क्वालिटी सुनने से आप भी आश्चर्य हो जाएंगे
1: जी
0: कि ये एक तरह का कट फ्लावर है, और इसको हम लोग काटेंगे तो सप्ताह भर बिना पानी का मुरझाए बिना रहता है, और उसका जो रंग भी नहीं उड़ता,
1: अच्छा
0: और अगर पानी में रखते हैं तो 10-15 दिन भी चले जाता। तो ये जो है मेनलैंड में और दुनिया भर के दूसरे जगह में भी, ऑफिस में या कोई फंक्शन में, घर को सजाने के लिए, होटल सब में जो जो फ्लावर का पॉट होता है इसमें रखते हैं, बहुत खूबसूरत भी दिखता है और रंग भी सुंदर है, और साथ में ये तरोताज़ा रहता है बहुत दिनों तक।
1: अच्छा तो यहाँ पर हम आपको जगदीश जी रोकना चाहेंगे कि आप काफी अरसे से खेती किसानी से

0: जुड़े हैं, बागवानी करते हैं। फूलों की जो आपने बात अभी बताई, तो फूलों की खेती करने के लिए आपने कभी सोचा नहीं था?
1: नहीं, पहले कभी सोचा नहीं था। मेरा हॉबी था कि
0: जी
1: मैं फूल लगाऊं, लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस में गया, उससे पहले भी एक दो कॉन्फ्रेंस में गया था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में जो मेनलैंड से बहुत सारा लोग आए थे, बहुत साइंटिस्ट, और इतना सारा जानकारी मिला था,
0: जी
1: इतना पोडलर में फूलों का बिक्री हो रहा था, और ये जो स्पेशल प्रजाति का जो फूल है, इसका डिमांड तो दुनिया भर में, और मेनलैंड में इसको खरीदने के लिए 3 लोग बिना पैदावार के पहले ही आ गए, तो
0: अच्छा,
1: मुझे ज़्यादा उत्साह हुआ और मैं इसको लगाने के लिए तुरंत तैयार हो गया।
0: तो ये जो प्रोग्राम था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था?
1: ये नाबार्ड की तरफ से
0: जी
1: लेमन ट्री होटल है, उसमें कॉन्फ्रेंस रखा था 2 दिन का।
0: जी जी
1: और मैं आपको बताऊं कि यहाँ का जो किसान है, फूलों का जानकारी का और इसका इतना अभाव है कि बहुत सारा किसानों को बुलाने के बाद में भी सिर्फ 15-20 लोग ही आए थे किसान, और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए थे, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में फूलों के बारे में जानकारी होने के बाद में थोड़ा सुने, और दोपहर लंच से पहले ही बहुत सारे लोग चले गए थे,
0: अच्छा
1: क्योंकि फूलों के बारे में उन लोग कभी सोचे ही नहीं कि इसका मार्केटिंग इतना अच्छा हो सकता है, इससे इनकम आ सकता। उन लोग चले गए, लेकिन कैरी के एक वैज्ञानिक ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करें, और उन्होंने बताया कि ये खेती आपका जो है लाइफ बदल सकता, सिर्फ लाइफ नहीं है, यहाँ
0: जी
1: का जो किसानों का जो माली हालत है ये बहुत अच्छा कर सकता है। और जो हमारा बागबानी है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर बागान करते हैं, उस बागान में जो नारियल सुपारी का छांव में भी इसको
0: उगा सकते हैं।
1: कर सकता है, जैसे मल्टीपल खेती करते हैं हम लोग,
0: जी जी
1: जो संयुक्त खेती करते हैं, उसी तरह इसको करके आमदनी अच्छा कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत भाया और मैं तुरंत तैयार हो गया, और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मैं ये 3 साल पहले की वाकया था, और 3 साल में मुझे पहले कैरी से कुछ चारा मिला था, और मैं वो लगाने के बाद में कुछ चारा जो है मैं अपने निजी उत्साह की वजह से अमेजोन और कुछ कुछ नर्सरी से मंगा के
0: जी
1: उसको लगाया। कुछ कैरी ने मुझे एक 14 प्रजाति का चारा दिया था, लेकिन अभी मुझे बहुत गर्व होता है बोलने के लिए, मेरे पास 30 से अधिक प्रजाति है,
0: अच्छा
1: और इसका डिज़ाइन और उसका जो रंग है वो बहुत अनोखा है, और मेरा बगान में अभी करीब 500 से ज़्यादा झाड़ है, और जिसमें अच्छा फूल भी लगता है, और ये
0: बहुत
1: बाज़ार में बिकना भी शुरू हो गया,
0: जी
1: और कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स ऑर्डर देते हैं तो मैं उसका बुके बना कर देता हूँ, तो लोगों को बहुत अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है।
0: लगता है।
1: तो मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, जो आप सबने भी देखा होगा कि जो पहले फिल्म सब में भी होता है, मेनलैंड में भी बहुत प्रचलन है, कि जब किसी का शादी में जाते हैं तो वहाँ पैसों का गिफ्ट या सामान के वजह से फूलों का गुलदस्ता
0: जी
1: लेकर जाते हैं, तो मैंने यहाँ ये अपने बगान का फूल लेके ये शुरू करने से ये बहुत लोगों को बहुत पसंद आया।
0: अच्छा
1: तो और ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब हमारे ये फूल है, अगर सारे किसान अगर हम लोग लगाए, जो बायर्स तैयार है इसको खरीदने के लिए, दुनिया भर में तो इसका डिमांड है।
0: जी
1: और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 3 बायर्स आए थे, वो तीनों बायर्स बोलते हैं कि उनको कम से कम 1,000 फूल चाहिए एक दिन में, और अधिक अगर 15-20 हज़ार का भी होगा तो भी उन लोग लेने को तैयार है।
0: अच्छा
1: तो सोचिए, इतने सारे फूल हैं, उनका चाहत है, उनका डिमांड है, जो मतलब लोग खरीदने के लिए तैयार है, तभी तो उन लोग खरीदना चाहते हैं हमसे। तो इतना हमारे पास उत्पादन नहीं है आज, मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा किसी के पास में ये हेलिकोनिया का
0: फूल
1: फूल
0: नहीं,
1: किसी के पास नहीं है
0: नहीं है।
1: अंडमान में।

0: अकेला तो इसको कर नहीं सकते हैं, और यहाँ का कुछ किसान आ जाएंगे तो अगर हम उनको ये फूल दे सकते हैं तो अच्छा आमदनी हो सकता है।
1: तो
0: एक
1: हम समझते हैं कि ये जो हमारे द्वीप समूह के किसान भाइयों के पास जानकारी का अभाव है।
0: बिल्कुल जानकारी का अभाव है उनको, इसका बारे में इतना जानकारी नहीं है।
1: जी
0: हमारे किसी भी विभाग के लोग और कैरी के लोग तो उनको कभी कभी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जो पुराने पारंपरिक खेती जैसे बगीचा बागवानी का,
1: जी जी
0: नारियल सुपारी, और वो भी मेनली नारियल सुपारी है, उसमें आम और कुछ फलों का तो
1: फलों।
0: करते नहीं है, हमें सिर्फ अपना खाने भर का ही उगाते हैं। और जो खेती में सब्जी वगैरह वो सब भी उगाने के लिए उन लोग ये हैं, क्योंकि ये रेडी कैश क्रॉप देता है तो इसीलिए वो रेडी पैसा के लिए उन लोग ये तैयार हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इसका बारे में काफ़ी जानकारी मिला और मैंने काफ़ी जानकारी हासिल किया है। ये जो फूल है ये हमारे अंडमान का एक दिन नारियल सुपारी जो अभी हमारे कैश क्रॉप है इससे
1: जी
0: भी पार करके जा सकता है, ये फ्यूचर कैश क्रॉप हो सकता है। और इसका लगाने, इसको उत्पादन में बहुत कम खर्चा है और ज़्यादा देख रेख नहीं है, क्योंकि हम लोग सब्जी का जो खेती करते हैं उसमें दवा देना, खाद देना, उसके बाद में भी कीड़ा मकोड़ों का प्रकोप हो जाता है तो उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर ये खेती में हम, मैंने देखा, खाद पानी तो देना नहीं होता, कीड़ा मकोड़ों का भी वो नहीं है,
1: जी
0: और इसको लगाने के लिए एक बार चारा खरीद के लगाने से ही उसमें अपने आप आते रहता है, सिर्फ धूप के समय पानी को देना जरूरत होता। और अगर पानी दे सकते तो जो धूप के समय जो 3-4 महीने यहाँ बहुत ज्यादा धूप होता, पानी का संकट होता है, उस समय हमारा उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन पानी अगर उपलब्ध करा सकता है तो उस समय भी साल भर बराबर उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा आमदनी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमारे तमाम किसान साथियों को। तो जगदीश हलदार जी, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, हाथी टापू, तो
0: जी
1: वहाँ के किसान आपसे जुड़े?
0: हाँ, कुछ लोगों को मैं प्रेरित किया हूँ लगाने के लिए
1: जी
0: चारा का, उन लोगों ने पूछे हैं चारा, तो मैं अभी चारा तैयार कर रहा हूँ उनको। और सच बोलने से मेरा पूरा बागान भी अभी भरा हुआ नहीं है, मुझे भी अभी चारा का बहुत सारा ज़रूरत है, तो कुछ कृषि विभाग और कैरी से भी चारा मिल सकता है। तो अभी अगर चारा मिले और ये विभागे अगर इनको किसी विभाग और किसी अनुसंधान संस्थान अगर हमारे किसान भाइयों को प्रेरित करेगा तो ये एक दिन बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, हमारे अंडमान से निर्यात हो सकता है, अंडमान का एक अलग ब्रांड बन सकता है इसको, ये हेलिकोनिया प्रजाति जिसका सारा जगह में डिमांड है, हम लोग इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। और फूलों का खेती के साथ साथ अगर हम अपना बागान का दूसरा जो बागवानी और जो सब्जी ये सब में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मैंने नया शुरुआत किया, ये भी कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान संस्थान का ही ज्ञान था, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि
1: जी
0: हम इसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ जो एक्टिविटीज है, गतिविधि, इसको करें, मधुमक्खी का पालन।
1: अच्छा
0: मधुमक्खी का पालन करने से ये क्या है, वो फूल उनको पसंद है और फूलों के आसपास से अच्छा से रहते हैं और साथ में जो मधुमक्खी परागण करते हैं इससे
1: जी
0: हमारा बागान का उत्पादन भी बढ़ जाता है। और मधुमक्खी का भी अच्छा स्कोप है, क्योंकि मधुमक्खी पालन से एक एक बक्सा जो है उसमें से हम हर एक 3 महीना 4 महीना में 1 kg का शहद निकाल सकते हैं, तो एक 4 महीना में अगर हमारे पास में एक 10 बक्सा हो तो 10 लीटर हनी निकालने से 500 रुपया से कम में बिक्री नहीं होता, तो हमको एक अच्छा इनकम इससे भी आ सकता है, तो ज़्यादा बक्सा भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसका बारे में एक जानकारी प्राप्त किया है, हमारे एक हडबे का एक मित्र है
1: जी
0: जो उनका बगान में 40 पेटियाँ रखे हैं, तो 40 पेटियों से उनको एक साल भर में हर 3-3 महीना में एक 30-35 kg का शहद मिल जाता है, तो उनको साल भर में एक 1.5 क्विंटल तक का उनको शहद मिल जाता है, तो उसको अच्छा आमदनी होता है।
1: जी
0: तो जब हमारे ही अंडमान में, लिटिल अंडमान में एक महिला ये कर सकती है जिसका काफ़ी डिमांड है, लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है, वहाँ से पोर्टलर लेके करना, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम पोर्टलर सिटी के पास में हैं, हम
1: जी
0: एयरपोर्ट में काफ़ी नज़दीक हैं, तो हम यहाँ उत्पादन करके हम अच्छा से कर सकते हैं। जो बाजार में जो शहद मिलता है वो चीनी मिला हुआ
1: जी
0: मिलावटी
1: जी
0: चीज रहता, तो हमारे यहाँ का जो लोग हैं उनको हम
1: अच्छा
0: अच्छे
1: चीज दे सकते
0: शुद्ध
1: हैं।
0: चीज देके
1: जी
0: उनका सेवा भी कर सकते हैं और अपना उत्पादन भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे किसान को अपना जो बागवानी जो बगीचा है उसके अंदर में पार्शियल शेड में ये हेलिकोनिया का पेड़ लगाना चाहिए, और साथ में हर किसान का खेत में ना कम से कम 10

0: तो मधुमक्खी का पेटी होना चाहिए। इससे क्या होता, हमारा परागण होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ जाएगा, हमारा इनकम भी बढ़ जाएगा। एक बात मैडम जी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी एक चीज़ में अगर निर्भर रहते हैं तो अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसा आते हैं तो
1: जी
0: हमको उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसमें बहुत सारा गतिविधि करते हैं अपने ही बगान में, और हर जो कोना कोना हर एक क्षेत्र को जो अगर हम उसको उपयोग में ले लेते हैं, और अगर हम मिक्स कृषि करते हैं, संयुक्त कृषि कर लेते हैं, तो हम किसान लोग कभी नुकसान नहीं उठा पाएंगे। हम अपने जो प्राकृतिक आपदा है उससे हम लोग बच सकते हैं और हमारे फैमिली को अच्छा से चला सकता है। ज़रूरत है कि हमको वैज्ञानिक पद्धति में काम करना और उनके मार्ग निर्देशन में हमको चलना है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम जो हमारे माता पिता ने पहले पुराना जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोगों को पढ़ाई लिखा है, सोशल मीडिया इतना आगे है, सारा जानकारी नेट में उपलब्ध है, इसके हिसाब से अगर हम करें तो हमको इससे बहुत फायदा हम उठा सकते हैं। और हम लोगों को बचना चाहिए कि किसान लोग हमेशा ही मार खाते कि जो हमारे मिडिल मैन होते हैं वो हमसे ज़्यादा फायदा उठा
1: फायदा
0: लेते
1: उठा
0: हैं।
1: लेते हैं।
0: तो अगर हम अभी जो सारे विभाग भी आगे लेके आते हैं या बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप सोसाइटी बनाते हैं,
1: जी
0: अगर हम सब किसान अगर मिल के इस तरह अपना उत्पादन करें और सटीक जगह में सटीक मार्केट में जाके हम इसको बेचें, तो हम
1: बेचेंगे
0: लोग कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। ज़रूरत है कि जानकारी लेने का। अगर हम तो बहुत उत्साहित हूँ और बहुत इच्छुक हूँ कि कुछ किसान भाई हमसे मिलें और ताकि हम लोग एक सोसाइटी का फॉर्म करें और इस तरह मिलके अपने आप को एक उदाहरण तैयार करें, तो हमारे गांव के भी 3-4 लोगों को मैं अपने साथ का उनको तैयार किया है, और अगल बगल गांव के भी मैं बोलता हूँ अगर हमारे साथ में अगर किसी विभाग और इससे जुड़े दूसरे विभाग अगर मदद करें तो हम एक एग्जाम्पल बना सकते हैं और हमारे पूरे अंडमान के सारे किसानों का माली हालात में सुधार कर सकते हैं और अंडमान का एक नाम बना सकते हैं ये हेलिकोनिया का फूलों से और ये मधुमक्खी का पालन से।
1: जी, बहुत ही एक अच्छा संदेश तमाम किसान भाइयों तक आपने पहुंचाया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बातचीत है इससे वो अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और हेलिकोनिया, एक नाम तो बहुत अटपटा सा है, लेकिन आपने कहा इसकी खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो जगदीश हलदार जी, आपकी इन बातों को तमाम किसान भाई सुने होंगे, उससे लाभ उठाएंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम जी।
1: फूलों की खेती से बढ़ती आमदनी और आत्मनिर्भरता, भाइयों अभी आपने इस विषय पर हाथी टापू के श्री जगदीश हलदार के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

किसान साथियों, गीत संगीत की दुनिया से बाहर आते हैं और ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। साथियों, अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा कुल वर्षा लगभग 75 मिलीमीटर रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85 से 87% तथा न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 73 से 77% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 23 से 29 किलोमीटर घंटा रहने तथा हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने तथा बादल युक्त रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम के मुताबिक आप कृषि पर जो कार्य करेंगे, आइए उस पर भी हम आपको बता दें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने तथा जल भराव के बचाव के लिए खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले या वर्षा के दौरान उर्वरकों एवं पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग न करें। आर्द्र मौसम में कीट एवं रोगों के प्रकोप की नियमित निगरानी करें। कटाई की गई उपज एवं पशु आहार को स्वच्छ रखें। सूखे और हवादार स्थान पर रखें। भारी वर्षा एवं मेघ गर्जन के दौरान पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें। फसल विशिष्ट सलाह जो दी गई है वो किसान साथियों को बताया गया है कि धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर स्थिर जल की गहराई बनाए रखें तथा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के बाद पर अनुशंसित नाइट्रोजन की मात्रा का 1/4 भाग डालें। विशेष रूप से फसल की प्रारंभिक अवस्था में धान के खेतों का नियमित निरीक्षण कर कीट एवं रोगों के प्रकोप की निगरानी करें। बागवानी करने वाले किसानों को बताया जाता है, अदरक और हल्दी के खेतों में जहां पिछले हफ्ते हुई बारिश से मिट्टी हट गई है, वहां पौधों के आधार को ठीक करने और बाहर निकली हुई जड़ों को ढकने के लिए मिट्टी चढ़ाने का काम करें। अतिरिक्त पानी निकालने और ऊंची क्यारियों को और नुकसान से बचाने के लिए पानी की सही निकासी का इंतजाम करें। पशुपालन किसानों को सलाह दी जाती है, पशुओं में मद चक्र के लक्षणों की नियमित निगरानी करें तथा देखे गए मद के लक्षणों के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान प्रातः या सायंकाल के समय करें। दोपहर के समय कृत्रिम गर्भाधान करने से बचें। मछली पालन किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा के बाद तालाब के पानी के पीएच की निगरानी करें। यदि पीएच 6.5 से कम हो जाए तो तालाब के पानी का पीएच स्तर बनाए रखने के लिए धूप वाले मौसम में कृषि चूना 150 से 200 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से डालें। साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित एक कृषि परामर्श सुना जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय क्या है। साथियों, उस प्रश्न का सही उत्तर है द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय अप्रैल से मई के दौरान है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जांच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अंग्रेजी कार्यक्रम के तहत अभी आप नेल्सन पॉल टोप्पो की वार्ता सुन रहे थे। विषय था फ्रॉम अर्थ टू द मून। अब प्रस्तुत है संवेद स्वरों में गौरव गान।

0: श्रोताओं, अभी आप संवेद स्वरों में गौरवगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। आज के झलकी कार्यक्रम के तहत सुनिए श्री जितेंद्र पाल सिंह द्वारा लिखा कहानी फाइल गुम हो गई। निर्देशक है कमल दत्त।
1: लाल बत्ती जला दी है। आप सभी इत्मीनान से अपनी परेशानियां बताइए, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
2: सर, जब से नए एसओ साहब आए हैं, हमारा काम चौपट हो गया।
3: हाँ सर, ना तो वो लेते हैं और ना लेने देते हैं।
4: सर, मुझे अपने हस्बैंड के लिए नए डिजाइन का स्वेटर बुनना है, लेकिन जब से वो आए हैं, मैं स्वेटर ही नहीं बुन पा रही।
3: साहब जी, वो तो फाइल ऐसे फटाफट निकालते हैं जैसे बंदूक से गोली निकल रही हो। फाइलों में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठेकेदारों के बिल, लोन्स के बिल बिना रुकावट के सैंक्शन हेतु भेज देते हैं।
2: हाँ। सर, अगर ये फाइलें ऐसे ही फटाफट निकलती रही तो हमारी चाय तो बंद हो जाएगी।
1: अरे आप लोग तो खामखा घबरा रहे हैं। आप लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगाया है।
4: हाँ,
1: अब ऐसी क्या बात हो गई है जो आप भीगी बिल्ली बने हुए हैं?
3: वो सर सर ऐसी बात नहीं है, ये एसओ सीधी भर्ती से आया है। अपने आप को जीनियस समझता है।
2: हाँ, सर, सत्यवादी हरिचंद समझता है अपने आप को। सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे।
1: अरे जवानी का जोश है, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ अभी उठाया नहीं है। वो अभी ऑफिस के कायदे कानून से वाकिफ नहीं है। उसे आप अपने रंग में रंगो, उसे काम करने का सलीका बताओ।
4: ओ, जी, सर, यही तो मुश्किल है। हम उन्हें कुछ बताएं, उल्टा वो हमें भाषण जानने लगते हैं। समय की पाबंदी, डिसिप्लिन में रहो, और बिना जाने क्या क्या। सर,
1: पहले आप इसकी नफ्स को पकड़िए। अगर इस पर भी बात ना बने तो अपना पुराना फार्मूला लगाइए।
3: सर, इस अभियान में हम आज से ही जुट जाते
4: हैं।
3: या तो उसे अपने रंग में रंग देंगे या यहाँ से उसका पत्ता साफ कर देंगे।
1: भाई देखो, आप सभी का तो मामला यहाँ निपट गया है।
3: जी, जी।
1: लेकिन आप एक बात भूल गए।
2: वो क्या सर?
1: आपके दिलों में उसकी इतनी दहशत फैल गई है कि आप हमारी चाय भी भूल गए हैं।
2: भूले नहीं सर, भूले नहीं सर। चाय अभी आ रही है।
4: सर, चाय के साथ गरम गरम समोसे भी आने चाहिए।
1: बिल्कुल सही फरमाया मधु ने। भाई अपने चक्कर में आप लोग हमारी जरूरतें तो कम से कम कम ना करें। अकेली चाय से काम नहीं चलेगा।
3: अरे लीजिए साहब, चाय के साथ समोसे भी आ गए।
1: अरे अरे, सब लो भाई, सब लो, आप भी लो, आप भी लो। अरे तुम भी लो भाई।
2: जी जी जी जी,
1: हाँ लो लो। मिस्टर विजय।
5: यस सर।
1: इस वक्त क्या बजा है?
5: वो
1: आप अब तशरीफ ला रहे हैं, मैंने सुबह आपको तलब किया था ना।
5: सर, मैं सुबह सही समय पे ऑफिस आ गया था। सर, सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है, उनसे आवेदन लेकर फाइल पर नोटिंग वगैरह कर अब आपसे सैंक्शन लेने आया हूँ। सर,
1: जाओ जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। फाइलें प्रॉपरली और थ्रू प्रॉपर चैनल ऊपर भेजिए, समझे?
5: ठीक है सर।
4: अरे तो ठीक है, मेरे चाहे। संगीता, संगीता देखो तो यह बुनाई ठीक हो रही है कि नहीं, देख देख तो सही।
6: हाँ हाँ, ये लाइन उल्टी, उसके बाद सीधा बुनो, यहाँ से डिजाइन पैरेलल हो जाएगा।
4: ठीक?
6: बिल्कुल ठीक बुन रही हो।
4: ठीक है। अरे हाँ, तुझे याद है ना, आज लंच में सेल में चलना है।
6: अरे हाँ हाँ, जरूर चलूंगी, क्यों नहीं।
3: अरे मैं आज मटर पनीर लाया हूँ, आप थोड़ा सा ले लीजिए।
6: ये भी कोई पूछने की बात है? लाइए।
3: हाँ, लीजिए लीजिए,
6: अभी लंच कर लेते हैं।
3: ठीक है।
6: शर्मा जी, आप भी आइए।
7: मैं आज लंच नहीं करूँगा, दरअसल मुझे कहीं जाना है।
8: अरे आप लोगों ने अभी से खाना शुरू कर दिया? अभी तो

0: 12 बजे हैं।
1: बब्बू बू सर
2: मैं
1: आप पूरे ऑफिस में देख लीजिए, सभी लोग खाना खाते हुए मिलेंगे। फिर सर हमारे लिए ये पाबंदी क्यों?
0: अरे आप लोगों को समय की कदर करनी चाहिए, हर काम समय पर करना चाहिए। लंच 1 बजे होता है, कल से सभी समय का ख्याल रखेंगे।
3: सर आज हमें एक सेल में जाना है, प्लीज आज जाने दीजिए।
1: जी
0: ठीक है, जाने से पहले इन फाइलों को पुटअप करके लाइए, चीफ साहब ने तुरंत मंगवाई है।
1: सर लंच के बाद फाइल भी निपटा देंगे हम।
4: जी इन्हें जाने दीजिए, लंच के बाद सारा काम हो जाएगा।
0: तीन बज गए, अरे सारा सेक्शन खाली पड़ा है। मिस्टर शर्मा आप अकेले बैठे हैं, सब कहाँ गए?
5: सर सब लंच में गए हैं, अभी आ जाते हैं।
0: अरे लंच का टाइम तो कब का खत्म हो गया, 2-2 घंटे लंच करेंगे तो काम क्या खाक करेंगे?
5: सर ये दफ्तर की परी पार्टी चली आ रही है।
0: अच्छा सब लोग आ जाएं तो सभी फाइलें पुट अप करके मेरे पास लाएं।
5: ठीक है सर, ठीक है।
1: ओ संगीता आज तुम्हें बहुत थक गई, कितनी बड़ी सेल थी है ना?
3: मुझे तो ये साड़ी बहुत जच रही है, पूरे 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है।
1: हाँ, बहुत अच्छा प्रिंट है साड़ी का, बच्चों के कपड़े भी तो बहुत फैशनेबल है ना?
3: तुम्हारे स्वेटर का डिजाइन भी तो बहुत उम्दा है।
4: अरे अरे आप लोग तो सेल का सारा सामान उठा लाई।
3: अरे कहाँ, पैसे कम पड़ गए, अभी तो और बहुत कुछ लेना था।
1: कल सेल का आखिरी दिन है मिस्टर गुप्ता, आपके रहते हमें रुपयों की कमी नहीं होनी चाहिए।
4: अरे डोंट वरी, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप लोग फाइल तो निपटाइए, एसओ साहब अपना लेक्चर मुझे सुना गए हैं, उन्हें फाइलों को निपटाना जरूरी है। एसओ साहब के लिए अर्जेंट है तो हमारे लिए और भी जरूरी।
1: हम समझ गए।
0: क्या बात है, बहुत शोर हो रहा है। अरे 4 बजने को हुए, फाइलें अभी तक पुटअप क्यों नहीं हुई?
4: अब वो सर फाइल गुम हो गई, मिल नहीं रही।
1: हाँ सर बुबू मेरी फाइल भी नहीं मिल रही, मैंने यहाँ टेबल पर रखी थी सर, वो पता नहीं
3: मैं तो दराज में रख कर गई थी, अब यहाँ है ही नहीं।
0: क्या क्या कह रहे हैं आप लोग, फाइल गुम हो गई? अरे लंच से पहले तो आप सबको मैं फाइलें दे के गया था, यही कहीं होगी, अपनी सीटों पे देखिए देखिए देखिए।
4: वो सर लंच में चूहे फाइलों को खा गए होंगे, यार चूहे भी तो बहुत हो गए हैं।
0: मजाक मत करो, चूहे फाइल को खाते नहीं कुतरते हैं, और चूहे ऐसा करते भी तो फाइलें नजर आती कुतरी हुई, पूरी गायब नहीं हो जाती। और फिर मिस्टर गुप्ता लंच में तो आप यही थे।
4: अब सर वो आप मुझे शक के दायरे में ना ले, लंच में 1 घंटे की नींद में लेता हूँ, सोता हूँ कुर्सियों पर पांव फैलाकर, इस दौरान चूहे क्या करते हैं मुझे कोई खबर नहीं।
0: सबके सब निकम्मे, अरे मैं कुछ नहीं जानता, फाइलें ढूंढ कर लाइए, नहीं तो सबके सब फंसोगे। अरे मैं सीधे चीफ साहब के सामने पेश कर दूंगा, फाइलें लाइए जाइए, मैं जा रहा हूँ।
1: हम अभी फाइलें ढूंढ कर लाते हैं।
4: अरे अब देखना गुम फाइलें क्या गुल खिलाती है।
3: फाइलें ठीक से गुम हो गई है ना गुप्ता जी?
4: अरे फिक्र ना करो, फाइलों को ऐसे ठिकाने लगाया है कि एसओ के साथ पुरखे भी ढूंढ ना पाए।
3: भाई मैं तो घर जा रही हूँ, इतना सामान हो गया है, अब तो ऑटो लेना पड़ेगा।
1: अरे रुकना, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना प्लीज। गुप्ता जी जरा संभाल लीजिएगा यहाँ के मामले को।
4: अरे मेरे रहते कोई चिंता की बात नहीं है। कल टाइम पर आ जाना, सुबह रोमांचक मीटिंग जो है।
1: ठीक है, बाय।

0: तो आप लोगों ने अपना फार्मूला इस्तेमाल कर ही लिया?
1: यस सर, सारा मामला फिट हो गया है, फाइलें ठिकाने लगा दी गई हैं, अब गेंद आपके कोर्ट में है।
2: गुड मॉर्निंग सर। सर हमें देर तो नहीं हुई?
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई आप सही वक्त पर आ गई हैं। लेकिन वो मिस्टर शर्मा कहाँ हैं?
3: मैं हाजिर हूँ सर।
0: अरे भाई मीटिंग का कोरम पूरा हो गया है, शर्मा जी हाँ। जाकर एसओ को बुला लाइए।
4: मैं आ गया सर। आई एम सॉरी, मुझे जरा देर हो गई, मैं लोग

0: से मिलकर उनके आवेदन लेकर आया हूँ सर। सभी लोग अपने अपने केस लेकर मामले को यहीं डिसाइड कर लें।
1: ये सब तो ठीक है, लेकिन कल की फाइलों का क्या हुआ? मेरे पास अभी तक एक भी केस नहीं आया।
0: सर, मैंने कल सभी फाइलें इन लोगों को दे दी थी, लेकिन ये कहते हैं कि फाइलें गुम हो गईं।
1: आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? सभी फाइलें एक साथ गुम कैसे हो सकती हैं?
0: मैं खुद हैरान हूँ सर। लंच से पहले मैंने इन्हें फाइलें दी थी और शाम को ये फाइलें गुम बता रहे हैं। क्यों मिस्टर गुप्ता, आपने फाइलें ढूंढी नहीं?
2: आप क्या कह रहे हैं सर, आपने तो हमें कोई फाइल दी ही नहीं। वैसे भी सभी फाइलें आप खुद डील करते हैं।
0: ये झूठ बोल रहा है सर। क्यों मिसेज मधु, मैंने आपको भी तो फाइल दी थी ना?
3: नो सर, मुझे तो कोई फाइल नहीं मिली। हमारे पास जो फाइल आती है हम उसे फौरन निपटा देते हैं, कोई पेंडिंग नहीं रखते अपने पास।
4: मैं तो कल वैसे ही जल्दी चला गया था, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं।
0: ये सब झूठ बोल रहे हैं सर।
1: बहुत खूब मिस्टर विजय, ये सब झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं। बहुत हो गया, अब आप अपना नाटक बंद कीजिए और फौरन मुझे फाइल दिखाइए।
0: सर मैं सच कह रहा हूँ, फाइलें मैंने इनको दी थी, एक एक की सीट पर जाकर फाइलें दी थी। आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर?
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुरंत फाइलें लाइए वरना मैं आपको अभी सस्पेंड करता हूँ।
0: अभी देख कर लाता हूँ सर।
2: सर देखा कैसे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है।
3: फाइलें तो मिलने से रही, अब आएगा मजा।
5: सर चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
1: हाँ भाई हाँ, जब तक फाइलें नहीं आती चाय नाश्ता ही हो जाए।
0: लीजिए सर लीजिए, ये रही फाइलें, हाजिर हैं।
3: क्या फाइलें मिल गई?
0: अंदर आ जाइए, यहाँ मीटिंग चल रही है।
1: आइए बैठिए सर, आप यहाँ।
0: हाँ तो सर, ये रही आपकी फाइलें।
1: ये फाइलें कहाँ से मिली?
0: दरअसल ये फाइलें गुम ही नहीं हुई थी। अरे मैंने असली फाइलें आपको दी ही नहीं।
6: मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मिस्टर विजय आपके ऐसो नहीं
0: जी,
6: ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के आदमी हैं।
0: क्या
3: सर, हम लोग जाएं? बहुत से काम निपटाने हैं सर।
0: सब यहीं बैठेंगे। अरे लाल बत्ती में तो रोज मीटिंग होती रही है, आज कमरा लॉक कर दिया गया है।
6: आप सबकी कारस्थानियों की शिकायतें हेडक्वार्टर पहुंचती रही।
0: क्या
6: इन सब का पर्दाफाश करने के लिए मिस्टर विजय को यहाँ ऐसो बनाकर भेजा गया था। मिस्टर विजय आगे की कार्रवाई करो।
0: ये लोग आम जनता की फाइलें गायब कर देते थे, जब तक लोग इनकी मुट्ठी गर्म नहीं कर देते तब तक फाइलें गुम रहती।
1: सर ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है।
3: जी, यहाँ सर कुछ नहीं होता जी। सर
6: आप लोग शांत रहिए, पहले पूरे मामले को समझने दीजिए, पहले इसका खुलासा हो जाए। मिस्टर विजय कंटिन्यू योर स्टेटमेंट।
0: आम जनता सुबह से आकर इनका इंतजार करती और ये उनको अटेंड करने के बजाय चीफ के कमरे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते, चापलूसी करते। लंच में ये तीन तीन घंटे गायब रहते, लोगों को ये शाम को मिलते।
2: सर हमें माफ कर दे, अब फाइलें गुम नहीं होंगी।
3: सर मैं अब अपने हस्बैंड का स्वेटर ऑफिस में कभी नहीं बुनूंगी। सर
5: इंक्वायरी तुरंत कर दिया करूंगा।
3: सर मैं भी शॉपिंग के लिए लंच में मार्केट नहीं जाऊंगी।
1: सर इन्हें माफ कर देना।
0: क्यों चीफ साहेब, ऑफिस का रूटीन तो यही है ना, मैं आपको सुबह आकर चाय पिलाया करूं। है
1: सॉरी सर, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
2: हमें माफ कर दे सर।
7: श्रोताओं, आज के झलकी कार्यक्रम के तहत आपने श्री जितेंद्र पाल सिंह द्वारा लिखा कहानी फाइल गुम हो गई सुना। निर्देशक थे कमल दत्त।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं।

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये है दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।
1: जेम्स ऑफ इंडिया का पायलट फेज हमारा शुरू हुआ है अगस्त के महीने में, एंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पहल है कि जिसके अंदर हमारे सारे सिटीजन्स, एवरी पर्सन हु हैज़ अ फ़ोन टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंड हमारी आर्ट कल्चर, हमारी संस्कृति को देश भर में इंटरनेशनल लेवल पे आगे दिखाने का ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड मैं आपके माध्यम से जेन जी जो है हमारे, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी, उनको अर्ज करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की सुंदरता, उसकी ब्यूटी, हमारी प्रिस्टीन बायोडाइवर्सिटी, आर्ट कल्चर, इन सब को जितना हम दूर दुनिया तक दिखा सकें इस माई वेव्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एंड जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उतना ही हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए अच्छा होगा। सो आपके माध्यम से मैं सारे जेन जी बच्चों को ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जेम्स ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स ऑफ 50,000 रुपीज़ ईच का भी अनाउंसमेंट किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इट्स अ गुड प्राइज मनी एंड आई अर्ज एवरीबडी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन दिस।
0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थी दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री पूर्वा गर्ग।

0: श्रोता, आपको फिर से एक बार याद दिला दे कि फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का आप आनंद लीजिएगा रात्रि 7:20 पर। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में कल सुबह 7:30 पर फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 बजे रक्षाबंधन का पावन त्यौहार विषय पर चर्चा आप सुन पाएंगे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक

0: एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
1: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। दक्षिण अंडमान पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन अगले साल भारत मंडपम में किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रंगत में 2 दिवसीय SHG खाद्य एवं हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। और टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स को देखते हुए गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक का मार्ग 24 अगस्त से वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। दक्षिण अंडमान पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया है। दक्षिण अंडमान पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मीडिया को जानकारी देते हुए दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले 60 दिनों में NDPS एक्ट के तहत 15 मामले दर्ज कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत 62 मामले दर्ज कर 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
1: कुल मिला के 15 NDPS केसेस हमारे इस 2 महीने के कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स में रजिस्टर किया गया था। कुल मिला के 33 आरोपियों को अभी तक इन 15 केसेस में गिरफ्तार किया गया है, जिनके एज प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इन 33 आरोपियों में 30 अक्यूज जो है 18 से 40 के एज ग्रुप के बीच का लड़के लोग है या युवाओं है, एंड बाकी 3 लोग 40 प्लस है। इसमें अभी 20 जन जुडिशियल कस्टडी में है एंड कुछ लोगों का बेल हुआ है एंड कुछ लोग अभी पुलिस कस्टडी में है एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन 15 केसेस के दौरान हमने कुल मिला के अराउंड 1 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन अप्रीहेंड किया है, सीज किया है, 7.75 किलोग्राम गांजा और 523.75 ग्राम चरस हमने सीज किया है।
0: पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में 50 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे, शराब की लत और अवैध तस्करी के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। सोशल मीडिया पर द्वीप समूह की प्रमुख हस्तियों के 6 प्रेरणादायक वीडियो जारी कर नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कानूनी दुष्प्रभावों, NDPS एक्ट के प्रावधानों, साथियों के दबाव का विरोध करने तथा स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया।
1: नशा न केवल एक व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं, पूरे समाज के प्रगति पे वो बाधा डालते हैं एंड हमें नशा मुक्त भारत अभियान के रिगार्डिंग हम सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए एंड साउथ एंडमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हमारे एंटायर पुलिस स्टेशंस और पुलिस पर्सनल इस एंटायर अभियान के तौर पे पूरी तरह से कमिटेड है।
0: पुलिस ने आम लोगों से नशीले पदार्थों तथा शराब की अवैध बिक्री, भंडारण या परिवहन की सूचना देने की भी अपील की है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन अगले साल 10 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में किया जाएगा। यह पहल देश भर के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विचार साझा करने, रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने तथा विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण में योगदान देने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। इच्छुक प्रतिभागी चार ट्रैक के जरिए इसमें भाग ले सकते हैं। विकसित भारत चैलेंज वर्तमान में क्वीज के माध्यम से उपलब्ध है तथा सांस्कृतिक ट्रैक एवं इनोवेशन फॉर भारत माई भारत पोर्टल पर सूचीबद्ध है। पहले से पंजीकृत प्रतिभागियों को

भारत पोर्टल के माध्यम से VBYLD 2027 क्विज में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। नए प्रतिभागी myBharat.gov.in पर अपना पंजीकरण कर माई भारत प्रोफाइल एट MBP ID बनाकर भाग ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, SHG खाद एवं हस्तशिल्प मेला और सड़क बंद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत द्वीप सखी खंड स्तरीय फेडरेशन की ओर से रंगत में 2 दिवसीय SHG खाद्य एवं हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त दीपांशु वोहरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान प्रमुख सीता मांझी, खंड विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, विभिन्न पंचायतों के प्रधान तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों ने अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थ, हस्तनिर्मित उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस दौरान अपने संबोधन में सहायक आयुक्त ने महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन और उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए द्वीप सखी के प्रयासों की सराहना की। खंड विकास अधिकारी ने स्वयं सहायता समूह को नियमित बाजार उपलब्ध कराने के लिए हर महीने ऐसे मेलों के आयोजन की घोषणा की। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से संचालित टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में गर्ल्स स्कूल ट्रैफिक पॉइंट से धर्मशाला जंक्शन तक का मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए 24 से 28 अगस्त तक सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस दौरान लोगों से यातायात पुलिस के निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब ने अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से आज रेड रन 5 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य HIV से बचाव, इसके प्रति जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में कुल 46 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। दौड़ को कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजुलिता राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष पी उमर ने जिला परिषद विद्यालय फ्रारगंज और जिला परिषद विद्यालय शोरपॉइंट में नए कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश कुमार सिंह, अधिकारी शिक्षा एवं सामाजिक न्याय समिति अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कार्य एवं विकास समिति के अध्यक्ष PA सरफुद्दीन, स्थानीय जिला परिषद सदस्य और शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों को आधुनिक तकनीकी आधारित शिक्षा प्रदान करना है। जिला परिषद द्वारा दोनों विद्यालयों को कंप्यूटर उपकरण और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए तकनीक की पहुँच को आवश्यक बताते हुए ग्रामीण छात्रों को भी शहर के बच्चों की तरह समान अवसर मिलने पर जोर दिया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण अंडमान पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज किया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का आयोजन अगले साल भारत मंडपम में किया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रंगत में 2 दिवसीय SHG खाद्य एवं हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया और टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स को देखते हुए गर्ल्स स्कूल से धर्मशाला जंक्शन तक का मार्ग 24 अगस्त से वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मछुआरों को मौसम संबंधी विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि 26 से 22 अगस्त तक अंडमान एवं निकोबार के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी तथा मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। और अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। एमवी स्ट्रेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर सोमवार 24 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलियान मंगलवार 25 तारीख को प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। रिटर्न अंडमान की यात्रा पर एमवी नालंदा मंगलवार 25 तारीख को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा जलियान की लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी उसी रोज रात्रि 9 बजे। एमवी सेंटिनल कार निकोबार की यात्रा पर मंगलवार 25 तारीख को दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान बुधवार 26 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल और नैनकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर एमवी कालीघाट बृहस्पतिवार 27 तारीख को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलियान रविवार 30 तारीख को दोपहर 12 बजे कैंबलबे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। नैनकौरी होते हुए कैंबलबे की यात्रा पर एमवी कैंबलबे मंगलवार 25 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा यह जलियान बृहस्पतिवार 27 तारीख को सुबह 8 बजे कैंबलबे से चलकर नैनकौरी होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इस जलियान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी कल ही सुबह 8:30 पर। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और जलियान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से चलकर श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और यह जलियान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप प्रस्थान करेगा और जलियान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलियान कल ही दोपहर 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा इस जलियान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और जलियान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराजदीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और जलियान सोमवार 24 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराजदीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबर

नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03-19-2-2-3-2-1-0-0, 03-19-2-2-3-3-0-7-7 और 03-19-2-3-2-4-0-0। सूचना देने वाले के नाम गुप्त रखा जाएगा। जनसूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं जानबाज फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और सपना की। इंदिवर के बोलवा धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं तेरे नाम फिल्म से। गीतकार है जलीस शेरवानी तथा संगीतकार है साजिद वाजिद। स्वर उदित नारायण की है।

श्रोता, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवा मित्रों को समर्पित हमारा कार्यक्रम युवावाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों याद रखिए, आपकी पहचान आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उन परिस्थितियों में आपका व्यवहार तय करता है। जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी बाधा नहीं बन सकती। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए और कदम आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि कई बार मंजिल हमसे उतनी दूर नहीं होती जितनी हम निराश होकर उसे समझ लेते हैं। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों आज शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम बातें मुलाकातें। दोस्तों अनुशासन, लक्ष्य और निरंतर प्रयास, यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को अपनी पहचान बनाने की राह दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से आगे बढ़ता है, तो उसकी मेहनत एक दिन ऐसी उपलब्धि में बदल जाती है जो ना केवल उसके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बनती है। और जब किसी की प्रतिभा को देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाए, तो उस सफर की कहानी और भी खास हो जाती है। दोस्तों आज हमारे साथ ऐसी ही एक प्रतिभाशाली युवा है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश का गौरव बढ़ाया और देश के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त किया। हम आपको अभी सुनवाने जा रहे हैं मेडिकल इंटर्न सुश्री सानिया सुभाष से ली गई ये भेंट वार्ता।

0: सानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कैसा था?
1: नमस्ते, मैं जो है अंडमान निकोबार में ही पली बड़ी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग कारमल से और मैं 12th क्लास पास्ड आउट फ्रॉम नेवी चिल्ड्रन स्कूल और मैं बचपन से ही एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुझान रहा है और ऐसे ही मैंने अभी MBBS कंप्लीट किया है लास्ट ईयर 2026 में।
0: आप पढ़ाई में कैसी थी बचपन में और उस दौरान आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा रुचि थी?
1: मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी ही थी। मुझे पहले से ही ये आदत थी कि मैं अपने स्पोर्ट्स और पढ़ाई को दोनों को मेंटेन करते हुए चलूं और मुझे 10th में CBSE बोर्ड में 92.6 स्कोर किया था एंड 12th में 95%। तो मुझे साइंस स्ट्रीम में पहले से ही इंटरेस्ट था एंड बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, इसलिए आई चोज़ नीट एंड मेडिसिन।
0: तो पढ़ाई में तो आप काफ़ी अच्छी थी ही, और इसके अलावा आपकी और क्या-क्या हॉबीज़ थी?
1: मैं जब 3 ईयर्स की थी तब मैंने डांसिंग स्टार्ट किया था। मुझे डांस करना बचपन से ही बहुत पसंद था। मैंने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी ये सारे डांस फॉर्म सीखे। उसके अलावा मैं चेस खेलती थी। आई वॉज़ अ नेशनल लेवल चेस प्लेयर। टिल 2018 आई वॉज़ प्लेइंग फॉर द स्टेट्स एंड नेशनल। उसके बाद फ्रॉम चेस आई शिफ्टेड टू मार्शल आर्ट्स और फिर मैंने कराटे, स्क्वे मार्शल आर्ट और थंगसुडू जैसे मार्शल आर्ट के प्रति मेरी इंटरेस्ट जगी थी।
0: हम आपसे और भी बातें करेंगे, पर इस समय हम आपसे एक सॉन्ग की फरमाइश लेना चाहेंगे।
1: तो मैं कौन हूँ सॉन्ग फ्रॉम सीक्रेट सुपरस्टार।

0: आपका मार्शल आर्ट्स की ओर रुझान कैसे हुआ?
1: जब मैं 5 ईयर्स की थी तब मैंने फर्स्ट मार्शल आर्ट कराटे स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला जिसमें मुझे ब्रोंज आया था। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल में इस मार्शल आर्ट में अच्छी हूँ और मुझे था कि मैं कैसी भी एक गोल्ड मेडल और नेशनल चैम्पियनशिप जीतूँ। तो वैसे ही करते करते मुझे और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने आगे इंटरनेशनल्स की तैयारी करी और ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई।
0: देखिए, मार्शल आर्ट्स तो बहुत प्रकार के होते हैं। आप कौन-कौन से मार्शल आर्ट्स करती हैं?
1: मैंने 3 मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट डिग्री हासिल करी है। पहला है कराटे जो कि बेयर हैंड फाइटिंग होती है पंचेस एंड किक्स के साथ। दूसरा है कोरियन कराटे जो कि कराटे का ही एक फॉर्म है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड थर्ड इज़ क्वे मार्शल आर्ट जिसमें मैंने 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है। एंड वो जो है एक इंडियन मार्शल आर्ट है, ये कश्मीर का गेम है जिसके फाउंडर हैं नाज़िर अहमद मीर सर जो कश्मीरी हैं। और ये जो है हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है जिसमें एक तलवार और ढाल से हम लड़ाई करते हैं। तलवार को हम तूरा कहते हैं और ढाल को जो है बरगुला कहते हैं। और इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है लोबा जो कि फाइटिंग होती है। दूसरा होता है कवान की जो कि काता इवेंट्स होती हैं जिसमें हम अपनी टेक्निक्स दिखाते हैं। और थर्ड इवेंट है आर्टिस्टिक इवेंट जिसको हम एरोस कहते हैं।

0: जिसमें म्यूजिक के साथ हम जो है अपने टेक्निक्स को डिस्प्ले करते हैं।
1: जी, जब आपने मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में कदम रखा, तब आपके सामने क्या-क्या चुनौतियाँ थीं और आपने उन सभी चुनौतियों को कैसे पार किया?
0: जब मैंने अपना फर्स्ट नेशनल खेला तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो फर्स्ट सीख मैंने सीखी है वो है वेट मेंटेनेंस। जब हम खेलते हैं तो हमें एक वेट कैटेगरी के अंदर रहना चाहिए और उस वेट से हम ऊपर भी नहीं जा सकते, ना हम बिलो जा सकते हैं। तो दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे थ्रू आउट सीखना था और मेंटेन करना था, जिसके लिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल चाहिए होती है। सेकेंड मेजर इशू वी फेस्ड कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तब हमारे पास वो ग्राउंड जो मैट्स थी वो बहुत लिमिटेड होती थी, तो हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, और जब हमें नेशनल में जाके खेलना होता था तब हम वो मैट्स में खेलते थे। तो देर वॉज अ डिफरेंस इन इक्विपमेंट्स, बट धीरे धीरे करके हमने प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को हर एनवायरमेंट में सेटल करा। और जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे फोर्थ ब्रोंज मिला था। मैं एक साल जो है हारी भी थी अपना
1: जी
0: स्कूल गेम, और उसके बाद मैंने वो एक पेस मेंटेन

0: हमें नेशनल में जाके खेलना होता था तब हम वो मैट्स में खेलते थे, तो देर वॉज अ डिफरेंस इन इक्विपमेंट्स, बट धीरे धीरे करके हमने प्रैक्टिस के थ्रू अपने आप को हर एनवायरमेंट में सेटल करा. और जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे फोर्थ ब्रोंज मिला था. मैं एक साल जो है हारी भी थी अपना स्कूल गेम, और उसके बाद मैंने वो एक पेस मेंटेन करना होता है कि किस तरह टेक्निक्स को यूज़ करना है, वो करने के लिए वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फोर्थ ब्रोंज से वो गोल्ड तक का सफ़र कैसे हो. बट जब 2016 में मुझे गोल्ड मिला सो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि कैसे खेलना है, एंड तब से 2016 से आज तक आई हैव नेवर डाउन, मैंने गोल्ड ही जीता है अभी तक.
1: जी तो बहुत अच्छी बात है. वैसे अभी आपने अनुशासन के बारे में बात की, यकीनन ही आपने कड़ी मेहनत की और अनुशासित अभ्यास किए, और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और निरंतर अभ्यास कितना ज़रूरी होता है.
0: मेरे जो कोच है उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि अगर आप डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं जियोगे और अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को अपने डेली लाइफस्टाइल से रिप्लेस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. हमारा एक फिक्स ट्रेनिंग टाइम होता था जिसमें हम उसी को फॉलो करते थे, और वो आज तक हम फॉलो करते हैं कि हमें वही डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चाहे वो ऑन द मैच हो, ऑफ फील्ड हो, चाहे हम अपने लाइफ में भी हमें कुछ डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, जैसे कि हम कभी भी खुद से जाके अटैक नहीं करेंगे. इवन इन रियल लाइफ हमें अपने आप को कैसे एक एग्रेशन के साथ नहीं रखना है, कैसे काम रहना है, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे मार्शल आर्ट ने सिखाया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मार्शल आर्ट में मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप परफॉर्म करते हो. और एक लेसन है जो मैंने अपने अभी 17 ईयर्स हो गए मुझे खेलते हुए, और ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मैं हमेशा गेम से पहले खेलती हूँ, वो है कि परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट एंड प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन, एंड दैट्स द ओनली मंत्रा जो मैं फॉलो करती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ.
1: मतलब सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है.
0: हाँ जी.
1: तो इस क्षेत्र में जब आपने कई जगहों पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था तो उस यात्रा का अनुभव कैसा था, और आपने मार्शल आर्ट्स और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाया?
0: जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 2017 में खेला था जो कि थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, और उसके बाद मैंने दो लगातार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते जो कि 2018 में कोरिया में और 2024 में उज़्बेकिस्तान. तो ऑल द थ्री मैचेस में, तीन जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें मुझे गोल्ड आया था. बट उसके बाद मैंने अपना सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला था, वो था इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट जिसमें हर प्रकार के मार्शल आर्ट्स के बच्चे आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से, और कई सारे मार्शल आर्ट जैसे कि हमारा कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, रेसलिंग हो गई, तो ये सारे लोग जो है अपना मार्शल आर्ट डिस्प्ले करते हैं. एंड उसमें जब मुझे ब्रॉन्ज प्राइज़ मिला तो दैट वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट जो मेरा लास्ट ईयर 2025 नवंबर में कोरिया में हुआ. एंड ये सारे मार्शल आर्ट में मुझे हर एक टूर्नामेंट में कुछ नया सीखने को मिला, वेदर इट्स ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड, हर टूर्नामेंट में एक लेसन था कि किस तरह अपने आप को बेटर बनाना है. एंड माई सोल पर्पज सिर्फ मेडल लेना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं परफॉर्म करूँ तो इट शुड लुक लाइक आई हैव परफॉर्म्ड एंड व्हाई एम आई अ वर्ल्ड चैम्पियन.
1: जी ये तो बहुत अच्छी बात है. तो जो आपका फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो एनवायरनमेंट होता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, तो इस यात्रा में आपके परिवार और दोस्तों का साथ कैसा रहा?
0: बचपन से ही मेरी मम्मा बहुत ही सपोर्टिव रही हैं, उन्होंने ही मुझे हमेशा बोला है कि आप जो भी कर रहे हो अगर आप उसको पूरे मन से करोगे, हार्डवर्क करते रहोगे तो आप ज़रूर जीतोगे. शी वॉज द वन जो मेरे हर टूर्नामेंट में मेरे साथ आती है एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. इवन माई डैड, भले ही वो फिजिकली मेरे साथ नहीं आ पाते हैं, बट हमेशा मम्मा और मैं जाते हैं तो वो घर को देखते हैं, और हम कभी भी ये नहीं कहते कि यू कान डू इट, डोंट गो दिस टाइम, बट हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है. तो मॉम और डैड का हमेशा से यही रहा है कि वी विल सपोर्ट यू टिल द एंड, बट तुम्हें ही मेहनत करनी है एंड दिस इज़ योर फील्ड टू शाइन.
1: तो इस मोमेंट पे हम आपसे एक गाने की फरमाइश लेना चाहेंगे.
0: द सॉन्ग वुड बी दंगल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दंगल.

0: तो सानिया जी, जब आपको ये पता लगा कि आपको भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, और जब वह पल आया तो उस पल की अनुभूति कैसी थी?
1: मुझे नेशनल चाइल्ड अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मिला था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इट वाज इन 2017। और तब मैंने अपना एशियन चैम्पियनशिप खेल लिया था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी चल रही थी। तो मुझे यही था कि ये

0: एक बिगनिंग है, एक बूस्ट है ताकि मैं आगे और अच्छा परफॉर्म कर सकूं. एंड इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, बट आई स्टिल कांट. मैं ये नहीं बता सकती कि उस वक्त कैसे फील हो रहा था इन वर्ड्स, बट डेफिनेटली इट इज़ अ फीलिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. एंड वो मूवमेंट हमेशा मेरे लिए काफ़ी क्लोज टू माई हार्ट रहेगा. इट वॉज अ शॉर्ट वॉक बट अ लॉन्ग जर्नी बिहाइंड इट.
1: तो उस समय तो आपको बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस होगा एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू।
0: थैंक यू.
1: इस सफलता और भारत के माननीय राष्ट्रपति से पुरस्कृत होने के बाद आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आए?
0: आफ्टर गेटिंग द नेशनल चाइल्ड अवार्ड, मुझे लगता है कि मुझे एक बूस्ट मिला था कि मुझे आगे अब और अच्छा करना है. इससे आगे मेरी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए कि जब भी मैं परफॉर्म करूं मैं अपने टाइटल को भी जस्टिफाई कर सकूं. और उसके बाद मैंने दो लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेले. मैंने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया और वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता. मैंने वर्ल्ड स्वॉर्ड फाइटिंग में भी रशिया में मेडल्स जीते. तो उसके बाद मुझे लगता है कि आफ्टर विनिंग नेशनल चाइल्ड अवार्ड मेरे अंदर और एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो है एक एंड नहीं होनी चाहिए बट एक स्टार्ट होनी चाहिए टू अनदर ब्यूटिफुल जर्नी. एंड दैट इज़ हाउ मैंने उस अवार्ड के साथ अपनी लाइफ आगे देखी.
1: तो जैसा कि आपने बताया कि आपने मेडिकल चूज़ किया बिकॉज़ आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, तो मेडिकल क्षेत्र के अलावा आपके भविष्य को लेकर और क्या-क्या सपने हैं और जीवन में आप और क्या-क्या करना चाहती हैं?
0: अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ इन एनएम्स, जीबी पंत हॉस्पिटल. तो मैं अभी जब भी क्लिनिक जाती हूँ आई फील कि आई हैव चोजन अ राइट प्रोफेशन फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में ना केवल ये एक नोबल प्रोफेशन है बट आई लाइक वर्किंग इन द मेडिसिन फील्ड. तो मैं आगे अपनी एमडी करना चाहती हूँ. और इसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा गेम्स एशियन गेम्स में या आगे चल के जो भी बड़े कॉम्पिटिशन्स आए उसमें मैं गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ. और मैंने अभी आर्चरी भी स्टार्ट करी है जिसमें मैंने दो स्टेट चैम्पियनशिप्स जीते हैं और एक नेशनल पार्टिसिपेट किया है. तो मैं चाहती हूँ कि आगे चल के मैं आर्चरी में भी अपना नाम मेडलिस्ट में लेकर आ सकूँ.
1: तो आप यकीनन ही एक ऑलराउंडर है। तो अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि देर इज़ नो शॉर्टकट टुवर्ड्स योर सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड.
1: जी
0: और आजकल हम अपने ऐसे लाइफ में जीते हैं जहाँ हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाकी लोग के लाइफ से. हम उनके ड्रीम्स देख के हमें लगता है कि यही लाइफ अच्छी है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी सबको कि ड्रीम वॉट यू वॉन्ट टू बी. आपके सपने अपने होते हैं और जो भी आपको करना है उसके लिए कभी भी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग. जब मैंने ड्रॉप लिया तो मुझे भी बोला गया था कि यू आर टू लेट, बट जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड डजेंट मीन दैट यू आर अ फेलियर. जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड लेट डजेंट मीन यू आर फेलियर. सो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हार्डवर्क करते रहना चाहिए और इट इज़ नेवर टू लेट टू फॉलो योर पैशन. एंड या वही जो मैं अपने बाउट में जाने से पहले खुद को बोलती हूँ, मैं आज ये सबको बोलना चाहती हूँ कि परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट एंड प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वॉन. दैट्स इट. थैंक यू.
1: तान्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे श्रोताओं को अपनी जर्नी के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच.
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेडिकल इंटर्न सुश्री सानिया सुभाष से ली गई ये भेंट वार्ता, और इसके भेंटकर्ता थे दीपक कुमार सिंह. दोस्तों, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत.

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं खिलाड़ी फिल्म से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी गीतों का लुफ्त उठाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये हैं सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हमारे सारे यूथ को एंड बियॉन्ड यूथ ऑल्सो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं एंड इवन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, कि एक कंटेंट क्रिएशन का स्कोप है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ रील्स बनाने से या फॉर एंजॉयमेंट पर्पज़ नहीं है, एक बहुत ही अच्छी रिपोजिटरी बनती है जो कि आगे जाके एक एजुकेटिव कंटेंट भी बनता है। इसमें बहुत तरीके के, जैसे अगर मैं अंडमान की बात करूँ तो यहाँ पे ज्योग्राफिकली इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा विविड है। यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेंस हैं, यहाँ जियोलॉजिकली आप देखें बैरन आइलैंड है, यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत ही डिफरेंट टाइप की ज्योग्राफी है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। यहाँ का फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ के जो ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जो नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप है, यहाँ पे सेलुलर जेल है, वाइपर आइलैंड है, चाथम है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत सारा है। प्लस अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पे सारे कल्चर्स आके मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही विविध तरीके के भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ही विविध तरीके के नाच गान और बहुत सारी इस तरीके की कल्चरल जो समागम हमें जिसे कहना चाहिए उसका है, तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जेम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। तो इन सब में मैं सभी यूथ से स्पेशली आग्रह करूँगा कि आप आएँ, इस पे कंटेंट बनाएं और आपको जिस विषय का नॉलेज है उसके बारे में कंटेंट बनाएं, जिससे दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में पता पड़े और एक आगे की पीढ़ी को भी कुछ चीज़ें इस तरीके की हम एक रिपोजिटरी साथ में बना पाएँ। सो इस

0: में कंटेंट क्रिएशन करने के बाद अपलोड करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है। वेज OTT प्लेटफॉर्म है, ऐप है, इंटरनेट पे आप जाके या तो क्रोम पे भी वेबसाइट खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके आप सिंपली इसको अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7, इट इज़ फंक्शनल, आप किसी भी टाइम दिन में अपलोड कर सकते हैं और इससे कैश प्राइजेस भी हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जूरी रहेगी जो डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड्स भी देगी और स्टेट लेवल पे भी आप एक रिकॉग्निशन भी मिलेगा और आप इस दिशा में आगे भी बढ़ सकते हैं। वी नो कि कंटेंट क्रिएशन इन इटसेल्फ एक एक आजकल इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। सो इन सभी चीज़ों को प्रमोट करते हुए भारत सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय और मैं सबसे आपसे वापस आग्रह करूँगा कि सब में हमारे साथ मिलकर आप ऐसे कंटेंट अपलोड करें। थैंक यू।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी के साथ ये थे सचिव पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन श्री विनायक चामड़िया।
2: राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में प्रस्तुत है जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म का गीत। इंदिवर के शब्दों को अपने स्वर से सजाया है नितिन मुकेश ने।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
3: अब लीजिए सुनते हैं फारूक कैसर की लिखी एक गीत रचना। फिल्म करतूत में इस गीत को संगीत से नवाजा है उषा खन्ना ने। गायक कलाकार है शाबिर कुमार।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
2: फिल्म अरमान में लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार को। गीतकार हैं इंदिवर तथा संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के दो पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 से 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरगंज एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। भारतीय वायु सेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों में उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाली SC ST OBC उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिस कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायु सेना के विज्ञापन को देख सकते हैं। ये था रोजगार समाचार। अब लीजिए सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

श्रोताओ, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार।

श्रोता, अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:45 पर कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी

0: उत्कर ने केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए

0: के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ. जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ. अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उड़ीसा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। IMD भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी और BWF

0: श्रोताओ नमस्कार, माह अगस्त की विज्ञान पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान, जिज्ञासा से समाधान तक की यात्रा। श्रोताओ, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया, और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम प्रतिरूप और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंट वार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रदूषियों का राज था। उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी, उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए, क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिनायंस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग, ये एक बंगाल रिनायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहां पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या

0: कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते हुए उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहां पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन एवं मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थे उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
0: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रामन जी ने जीडी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा तो मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जीडी बिरला जी ने रामन पे विश्वास किया और सीवी रामन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रामन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रामन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दूरगामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रामन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रामन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहां पे रामन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो ले नहीं जा रहे साथ में,
1: स्कैटरिंग।
0: तो वो रामन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रामन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
1: प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
0: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं जो ऐसी फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबोकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुने होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमेटिस कहते हैं, उसे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
1: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
0: मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
1: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो की विभागाध्यक्ष है मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़ ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धि

मता कहते हैं यौम आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम्स को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए, हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है। ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो ये बताता है कि ये

0: लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
1: अपनी भाषा में जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
0: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट बात होती है। प्रोसेसिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
0: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई, ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स के पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
0: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का। अलग अलग जीवाणियों का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कम्प्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ, कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म खत्म होता है बहुत

0: मुश्किल है और केवल एटीजीसी से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं। वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
0: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हेमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो हैं जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर जो आप सुधारते हैं, जिनको ये होती कैसे हैं?
0: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है, तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं। जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज, अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित

0: निश्चित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है। और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
1: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
0: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है। और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन, जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम
0: बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल, जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
2: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड्स रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल, ट्यूमर रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पॉन्स से जोड़ा गया। ये AI स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जेनोमिक डेटा सेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है।

0: प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया, जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जेनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन, तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूरदृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया, उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे, प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपने प्रभावशाली आवाज़, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया।

0: कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: This is Akashwani. In tonight's national program of music, we bring you a Carnatic vocal concert by Sri Shreyas Narayanan. Sri Shreyas Narayanan is a top-grade Carnatic vocalist of Akashwani, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshidhar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M.A. Venugopal and late P.S. Narayana Swami, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Sri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program, he will be accompanied by Srimati S.R. Rajashree on the violin, Sri A. Balakrishna Kamath on the Mridangam and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the Ghatam.
0: Sri Shreyas Narayanan अपने गायन की शुरुआत संत त्यागराज की कृति निन्नाड नेला से कर रहे हैं, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: Sri Shreyas Narayanan begins his vocal recital with Kriti Ninnad Nela, a composition of Tyagaraja in the raga Kannada, set to Adithal.

0: प्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to Kamakshim Kalyani, a composition of Muthuswami Dikshithar in the raga Kalyani, set to Rupakathal.

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is Taaye Tripura Sundari. In the rag, Shuddha Saveri, set to Kandachapu Thaal, composed by Periyasami Thooran.

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथी, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was Taniyavartanam, played on the mridangam by Sri A. Balakrishna Kammat and on the ghatam by Sri Vaikam N. Gopalakrishnan.
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Srimati S.R. Rajashri on the violin, Sri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। मौसम, कोलकाता स्थित मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा हुई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि 22 से 26 अगस्त तक अंडमान तथा निकोबार के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी तथा मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। हमारी आज की यह सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:23 पर हमारी स्थानीय सभा की शुरुआत होगी। हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। जय हिंद।

டெஸ்டிங்.

talk studio testing announcer mic 1. Now the time is 4:53, 14:50.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की पहली तिथि तदनुसार अनुसार 23 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:28:40 हुए हैं। आज की अपनी पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।